FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शुक्रवार है। सक संवत 1948 के अश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026। सवेरे के ठीक 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, चलिए सुबह का पहला काम ये करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, नहीं मैं केवल भगवान से डरूंगा। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूंगा नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूंगा और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा लिखा जोखा विविध भारती से आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस कान, आज भाग 329, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम में ये श्रृंखला चल रही है। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की है, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। आज सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 बजे समाचार, 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। मिलिंद सबनीस ने इस श्रृंखला को लिखा है, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की आज 48वीं कड़ी। चित्रलोक कार्यक्रम 8:30 पर होगा। सुबह 9:30 और शाम 9:30 पर आप सुनेंगे अभिनेत्री आशा पारेख पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग, दिन में 12 बजे समाचार। यादों की महफिल कार्यक्रम 12:05 पर होगा। 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। 2:15 पर दोपहर समाचार। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आप अपने रेडियो सेट, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, DTH और न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। दिन में 2:30 पर होगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है यादों की तपिश। इस कहानी का पहला भाग सुनवाया जाएगा।

लेखिका और स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6 बजे समाचार। 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 7 बजे जय माला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें कार्यक्रम का 13वां भाग। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत रूपक सुनिएगा महान आत्मा, लेखन निर्देशन गुरमीत रामल मीत का है।

0: 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार, संध्या रात 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर अभिनेत्री आशा पारेख पर केंद्रित आज के फनकार, 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग। विविध भारती से आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस गान आज भाग 329।

युद्धरत कुंभकर्ण का घोर गर्जन सुनकर देवता भी भयभीत हो गए हैं। कंदरा की भांति खुले उसके मुख को श्री राम ने अपने वाणों से भर दिया, फिर भी वो धराशायी नहीं हुआ। वो श्री राम पर प्रहार करने दौड़ा ही था कि उन्होंने एक तीखे वाण से उसका सिर काट दिया। कुंभकर्ण का कटा सिर जाकर रावण के सामने गिरा, जिसे देख वो व्याकुल हो गया। इधर कुंभकर्ण के रुंड को इधर से उधर दौड़ते छटपटाते देख राक्षस सेना में हाहाकार मच गया और धरती डोलने लगी। श्री राम ने उसके धड़ को दो टुकड़ों में काट दिया। पर्वत खंडों की तरह दोनों टुकड़े धरती पर आ गिरे। ये दृश्य देख देवताओं ने हर्षध्वनि की और प्रभु का गुणगान करने लगे। ये कथा सुनाते हुए भगवान शिव बोले, हे गिरिजे, इस प्रकार कुंभकर्ण जैसे अधम पापी राक्षस को भी प्रभु ने अपने हाथों सद्गति प्रदान की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, और हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है गायक संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन को। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है।
2: नमस्कार
1: शेखर दादा, आज की इस दूसरी कड़ी में हम अपने श्रोताओं को क्या सुनवाने वाले हैं?
2: चूंकि हम लोगों का विषय एक पूरी शताब्दी को लेकर है
1: जी,
2: तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भक्ति के बहुत अलग अलग रंग आए
1: जी, जी।
2: और शुरुआत से ही हमारे यहाँ सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति
1: जी,
2: और उसमें फिर सूफी रंग भी आया। लेकिन 1920 के बाद से 1925 के कालखंड में
1: जी,
2: एक और भक्ति का नया स्वरूप हमारे समक्ष आया, और वो था देशभक्ति का रूप।
1: देशभक्ति रूप
2: कि अचानक पूरा देश जो था वो स्वतंत्रता पाने के लिए एकदम आलोड़ित हो रहा था, कि उनको लग रहा था कि बस किसी तरह हमें ये आजादी मिल जाए। तो देश के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब तो थे ही,

0: और उस समय एक नारा अपने आप देश प्रेम का नारा बन गया था, और वो था वंदे मातरम।
1: जी,
0: कहीं भी कुछ भी होता था तो वंदे मातरम की का जयकार लगाकर लोग आगे बढ़ते थे।
1: यहाँ तक कि लोग नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहने लगे थे।
0: और उस समय ये बहुत कम लोगों को पता है, हम सब जो ये गीत गाते हैं ये मूलतः संस्कृत का गीत है।
1: जी जी,
0: जो बंकिम बाबू ने लिखा था अपने उपन्यास आनंद मठ में।
1: जी,
0: और उसकी बहुत सारे लोगों ने धुन बनाई है, पर जिस स्वरूप में वो हमें राष्ट्रगीत के रूप में हम सब भारतवासी उसे गाते हैं, उसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी।
1: जी,
0: और उन्होंने, ये भी संयोग की बात है कि देशभक्ति का ये गीत राग देश में उन्होंने बांधा था, तो मैं चाहता हूँ कि श्रोताओं को मैं थोड़ा सा राग देश का एक थोड़ी सी झलकी।

0: क्या बात है।
1: राग देश का रूप है। हमारे यहाँ रागों के नाम भी बड़े अद्भुत रखे गए।
0: जी जी,
1: देश भी एक राग है, एक हाँ। राग है देसी, बिल्कुल अलग उसका रूप है। फिर हमारे यहाँ शहरों के नाम पर भी, क्योंकि मैं राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूँ,
0: हाँ।
1: तो हमारे यहाँ बहुत सारे शहरों के नाम और गांवों के नाम पर भी राग बने हुए हैं। मुल्तानी बना हुआ है, वृंदावनी सारंग है, भोपाली है, हाँ। जौनपुरी है
0: जी।
1: तो हमारे यहाँ ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर कोई तेलंगाना का विद्वान था तो उसने अपने एक राग बनाया, उसका नाम तिलंग रखा। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सारे स्वरूप आए। और जब आनंद मठ का ये गीत लोगों के समक्ष आया तो हर एक कार्यक्रम में ये गीत गाया जाने लगा और हमारे उस पूरे स्वातंत्र्य आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गया। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की धुन, ये श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी एक धुन बनाई थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, एक धुन बनाई थी जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने
0: जी।
1: और एक और धुन बनाई थी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले आप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ये धुन सुनिए, क्योंकि इतनी सुंदर ये धुन है
0: जी।
1: कि पिछले 100 वर्षों से भी अधिक कालखंड से ये हमें आंदोलित करती है। सभी श्रोता आनंद लें। वंदे मातरम
0: जी।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए आप अपने श्रोताओं को अब क्या सुनाएंगे।
1: मैं चाहता हूँ कि मैं यही गीत आपको दूसरे स्वरों में सुनाऊँ, क्योंकि विशेषता हमारे भारतीय संगीत की ये है, बहुत सारी रचनाओं के आपको बहुत सारे रूप मिल जाएंगे।
0: जी जी,
1: तो वंदे मातरम की भी बहुत सारे रूप हैं। तो उनका एक और आदरणीय हेमंत कुमार जी द्वारा फिल्म आनंद मठ के लिए ये रचना रिकॉर्ड हुई थी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है, और वो रचना भी जब आप सुनते हैं तो आपके एकदम रोम रोम
0: खड़े जाते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं यही रचना।

0: आनंद मठ फिल्म की ये रचना अभी आप सुन रहे थे।
1: ये हेमंत दा ने जब रचना की थी तो ये राग भैरवी में
0: हाँ।
1: इसकी रचना की है, पर आम तौर पर जो भैरवी का रंग होता है
0: जी,

0: वो रंग उन्होंने नहीं रखा,
1: जी
0: क्योंकि हमारे यहाँ भैरवी में ज़्यादातर ठुमरियाँ होती हैं या भजन होते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस वंदे मातरम की रचना की, मुझे लगता है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनुपम है। मैं चाहूँगा श्रोता इसको बहुत गौर से दो बार, चार
1: जी
0: बार, 10 बार सुने, क्योंकि इस तरह।

0: मातरम वंदे मातरम, तो एक समूह गान का भाव भी आए, देशभक्ति का भी भाव आए और फिल्म की जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से एक कॉम्पोजिशन बने। तो हेमंत दा को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक अद्वितीय रचना बनाई है। ऐसी रचना हेमंत दा के रबर टायर में मुझे दूसरी दिखाई नहीं देती जिसको मैं इस रचना के साथ में रख सकूं कि हेमंत दा ने इस तरह की एक और रचना बनाई। वंदे मातरम जैसी धुन हेमंत दा ने केवल ऐसी ही बनाई और यहीं पर उसका प्रयोग किया है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर दादा इस जानकारी के लिए। और अब आज की इस कड़ी को यहीं पर समेट लेते हैं और कल तीसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे संगीत सरिता में। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज आपने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनी। कल हाजिर होंगे तीसरी कड़ी के साथ तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज है 2 अक्टूबर। आज के दिन भारत में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। श्रोताओं, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, जिसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके साथ ही आज हम लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मना रहे हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वे अपनी सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान के नारे के लिए जाने जाते हैं। श्रोताओं, साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांधी जी के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था। इसलिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मना रहे हैं और स्वच्छ भारत दिवस भी। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के कारण इस दिन को देशभर में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को समर्पित है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक गीत।

और राष्ट्र सेवा के आदर्शों पर आधारित था। उनके विचार स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण रहे तथा आज भी सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रासंगिक हैं। श्रोताओं, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का मूल आधार सत्य, अहिंसा और मानवता था। उनका मानना था कि सत्य जीवन का सर्वोच्च मूल्य है और अहिंसा के माध्यम से भी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। उनके जीवन के प्रमुख मूल्य थे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सादगी, स्वदेशी और स्वावलंबन, सर्वोदय, सामाजिक सद्भावना। गांधी जी ने सत्य को अपने जीवन का आधार बनाया। वे हिंसा के स्थान पर प्रेम, सहनशीलता और शांतिपूर्ण संघर्ष में विश्वास करते थे। अन्याय के विरुद्ध बिना हिंसा के दृढ़ता पूर्वक संघर्ष करना ही उनका मूल मंत्र था। उन्होंने स्वयं सरल जीवन अपनाकर सीमित आवश्यकताओं का संदेश दिया, स्थानीय वस्तुओं और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्ग के कल्याण पर जोर दिया। वे जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन दर्शन के बारे में। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दो महान राष्ट्र नायकों में से हैं। दोनों का ही जीवन सादगी, सत्य, ईमानदारी, अनुशासन

श्रोताओं, जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन दर्शन के बारे में। श्रोताओं, लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन ईमानदारी, सादगी, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति का उदाहरण था। प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपने सरल और अनुशासित जीवन को बनाए रखा। उनके जीवन के प्रमुख मूल्य थे ईमानदारी और नैतिकता, कर्तव्य के प्रति समर्पण, सादगी और विनम्रता, अनुशासन, राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व, किसान और जवानों के प्रति सम्मान। उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान देश की सुरक्षा और कृषि दोनों के महत्व को दर्शाता है। श्रोताओं, आज के समय में तेजी से बढ़ते भौतिकवाद, सामाजिक तनाव, हिंसा, भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय समस्याओं के बीच गांधी जी और शास्त्री जी के विचार विशेष महत्व रखते हैं। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का संदेश आज सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, नफरत और सामाजिक विवादों के बीच संयम, सत्यापन और संवाद की प्रेरणा देता है। उनका स्वावलंबन और सादगी का विचार पर्यावरण संरक्षण तथा जिम्मेदार उपभोग से भी जुड़ता है। श्रोताओं, शास्त्री जी की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा आज सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उनका जय जवान जय किसान का संदेश आज भी देश की सुरक्षा और कृषि के महत्व को समझने में उपयोगी है। श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमने बात की गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन दर्शन के बारे में। गांधी जी और शास्त्री जी का जीवन दर्शन आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और मानवता का मार्ग दिखाया, जबकि शास्त्री जी ने ईमानदारी, सादगी, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को अपने जीवन में उतारा। वर्तमान समय में इन मूल्यों को व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अपनाने से एक अधिक जिम्मेदार, शांतिपूर्ण और नैतिक समाज के निर्माण में सहायता मिल सकती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि हम सबको गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। इसी के साथ अब दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना, मैंने दिल तुझको दिया फिल्म से। आवाज़ें थी उदित नारायण, अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे थे फैज अनवर ने, संगीत था डब्बू मलिक का। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं संघर्ष फिल्म से, सोनू निगम श्रद्धा पंडित की आवाज़ में। गीत रचना है समीर की, संगीत रचना जतिन ललित की।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए सुनते हैं हीरो हिंदुस्तानी फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है कुमार शानू, श्रद्धा सरगम ने, साधना सरगम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपने सुना तमाशा फिल्म से। आवाजें थी मिक्का सिंह और नक्श अजीज की। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभा

0: योजनाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business.

0: एंड ईज ऑफ ट्रैवल।
1: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरे डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्यभूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
3: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
4: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना है, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमईज के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने

वित्त मंत्रालय का बयान दिया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान। जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्य की सुर्खी है, महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति। गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक दे दिया है, तेजस संग उड़ान।

0: एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। श्रोताओं, सवेरे के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गुलाम अली की गाई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
1: लेप्रसी की जांच एवं इलाज

0: सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
1: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गजलें। इसी के साथ हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम में ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अजीत का भी नमस्कार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
1: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
1: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
1: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1800

0: 1991 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
1: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था। वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
0: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
1: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया। उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें,
0: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे,
1: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रतापूर्वक साफ इनकार कर दिया।
0: जी।
1: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
0: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था। वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
1: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था।
0: जी।
1: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
0: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है। और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए।
0: जी।
1: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।

0: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखे कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का सोने का सब साफ, गलियां साफ, और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
1: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

तो यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन, महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
2: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
2: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा

0: उनके बदन पर कुछ ना होता था, रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीजों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
1: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
2: जी बापू।
1: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
1: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए,
2: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
2: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
1: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते। एक और साहब वहां बैठे हुए थे, बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
1: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक। हाँ बिल्कुल।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल की लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं,
2: किनारे पर ही तो होगा ना।
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाला है। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट
3: लूँ। अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो, छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए, हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है, मैं टमाटर काट।
3: हाँ, मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ।

0: प्रणाम बापू।
1: नमस्कार बापू।
0: प्रणाम बापू।
2: प्रणाम प्रणाम।
3: ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
1: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
0: बापू सब्जियां काट रहे थे।
3: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
0: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
3: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
0: जी बापू।
3: अच्छा जाओ।
0: जी।
3: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
1: जी,
0: चलो चलते हैं।
1: जी।
4: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
0: बापू बापू ये देखिए।
3: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
0: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
3: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
0: जी।
3: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
0: हाँ।
3: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। उन्होंने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
0: जी बापू।
3: हाँ, समझ गई ना?
0: जी।
3: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
0: जी बापू, धन्यवाद।
4: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें, लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
5: अरे बापू ये बर्तन तो धुल गया है।
3: अरे सुधीर, नहीं अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
5: हाँ?
3: अभी तो इसे और चमकाना है।
5: ओ
3: देखो, इसे और चमकाना हो। ये लो, अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
5: चमकने भी लगा।
3: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो, जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, समझे सुधीर?
5: हाँ जी बापू जी।
3: हाँ शाबाश।
4: तो साथियों, हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं, और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग

0: कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 684 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। और प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी, दिन के तापमान में बढ़ोतरी, रात का पारा गिरा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के राजघाट और शास्त्री की समाधि विजय घाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं हो रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों के बीच गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रपति ने नागरिकों से सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इधर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में सचिवालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री गांधी सर्किल पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भरतपुर में गांधी जयंती के अवसर पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर और ब्यावर में संगोष्ठी और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाड़मेर में इस मौके पर गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सवाईमाधोपुर में गुलाब बाग स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। आज देश भर में

0: विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। इधर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को नए कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और सुरक्षा से जुड़े बदलावों के बारे में बतलाएंगे। इससे पुलिस और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर जोर देकर उपलब्धता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष, पराली और अन्य जैविक अपशिष्टों को संपीड़ित बायोगैस तथा जैविक खाद में बदलना है। श्री पुरी ने कहा कि संपीड़ित बायोगैस भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि ये जैविक संसाधनों को स्वच्छ घरेलू ऊर्जा में परिवर्तित करने के साथ ही जैविक खाद के उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकती है।
1: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सभी पीढ़ियों की सहभागिता से ही मजबूत और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास नई ऊर्जा और विचार है तो वरिष्ठ पीढ़ी के पास अनुभव और जीवन की गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा और वरिष्ठ जनों का अनुभव साथ चलें तो समाज की प्रगति और राष्ट्र की शक्ति तथा अधिक मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों से संवाद के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के 50,94,831 लाभार्थियों को कुल 684 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए हस्तांतरित की। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना के तहत पोर्टल अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। पहले ये 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन और अन्य जानकारी अपडेट करने के लिए अब 1 महीने का समय और मिल सकेगा। राजधानी जयपुर में आज से आपनों जयपुर हरित संगम अभियान के तहत एक पेड़ पूर्वजों के नाम कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जवाहर सर्किल से करेंगी। अभियान में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी को रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर रहेगा। अभियान के तहत पूर्वजों की स्मृति में पौधारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा और

0: महापौर सुनील कोठारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य से कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। उदयपुर में आज से सांसद स्वदेशी इंडस्ट्रियल एक्सपो की शुरुआत होगी। आरसीए मैदान में शुरू होने जा रहे इस एक्सपो का उद्घाटन जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी करेंगे। इस कार्यक्रम में युवाओं को समाज और नवाचार से जोड़ने के लिए रोजाना विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक्सपो में कल सड़क सुरक्षा और नागरिक जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत युवाओं को यातायात नियमों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद डॉ. मन्नालाल रावत और शहर विधायक ताराचंद जैन भी मौजूद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 684 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। और प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी, दिन के तापमान में बढ़ोतरी, रात का पारा गिरा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में प्रस्तुत है। परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा, इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
3: नमस्कार। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में आप सभी का स्वागत। विकास की दौड़ में आज दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करना। भारत ने इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव ईंधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जलवायु अनुकूल विकास को अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान गुजरात में जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए, प्रधानमंत्री सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ जैसी पहलों तक हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सामने आए हैं। गुजरात का चारण का सोलर पार्क देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में सहयोग कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की सौर क्रांति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है, ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ ऊर्जा की क्या भूमिका है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान तकनीक नीतियों और जन भागीदारी का किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आनंद शर्मा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार।
3: और आइए सुनते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ कर रहा है और अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से।
4: भारत में

सौर ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। भारत की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया गया ISA सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता

0: आईएसए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के भीतर सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में भी पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट हो चुकी थी। वर्ष 2014 में ये क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा का विस्तार केवल अधिक बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से भी है। साथ ही रूफटॉप सोलर के विस्तार से परिवार बिजली की लागत कम करने और कुछ मामलों में अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।
1: आनंद शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहलें बहुत चर्चा में रही हैं। गुजरात के इस अनुभव ने देश की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या गुजरात का जो ये मॉडल था, ये देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है?
2: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये विजनरी स्टेप था, और वो भी 2009 में, जब शायद इतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर। उस समय एक स्टेप लेना और एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना जो कि ग्लोबल वार्मिंग, मिटिगेशन, अडेप्टेशन मुद्दों पे जिसने एक लीड रोल निभाया, और एक उसी विभाग के अंडर जो है उन्होंने अपना एनर्जी का डिपार्टमेंट है, गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना की, और वो आज एक पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। करीब करीब वहाँ पर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी आज जनरेट की जा रही है, और 2030 तक उसका टारगेट शायद 150 गीगावाट का है, और 2050 तक 300 गीगावाट का है। और उसी की देख रेख में, उसी की पहल को देखते हुए अन्य स्टेट जो है, केरल भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है भारत जिस तरह से सौर ऊर्जा में गुजरात ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल मोदी जी, उनके अंडर जो विजनरी स्टेप लिया था, वो एक मतलब कि इस समय जो दिख रहा है कि उस समय स्टेप लिया था। आप सोचिए कि इस समय जब लड़ाइयाँ शुरू हुई खासकर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और हमारी एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हुआ है, तो अब समझ आ रहा है कि देखिए उस समय जो लिया हुआ स्टेप है कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो वो एक बहुत ही विजनरी स्टेप था, और मुझे लग रहा है आज इसको हम और मतलब जैसे कहते हैं गति लानी होगी, और उसके लिए भी सरकार जो है पूरा सब्सिडी दे रही है, के साथ साथ जो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 5 और 6% पे इंटरेस्ट पे पैसा भी मिल रहा है सोलर पैनल लगाने का। और आपने जैसे कहा पीएम सूर्य घर, करीब करीब 10 लाख घर जो है वो इसको लगा चुके हैं, और मुझे लगता है टारगेट शायद 1 करोड़ जी से ज़्यादा घरों का है आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ सोलर पंप्स, वो एक बहुत फ़ायदा होगा किसानों को। कई बार क्या होता है आपके ग्राउंड में पानी तो है मगर आपके पास डीजल नहीं है उसको निकालने के लिए पानी के, सोलर पंप है तो आप खास कर सिंचाई कर पाएंगे फसल को उस समय जब आपकी लंबे समय से बारिश नहीं होती है। तो आपको ये देखिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी मिली उससे आपको फूड सिक्योरिटी में भी फायदा हो रहा है
1: जी।
2: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूँगा, और अन्य कंट्रीज को एग्जांपल दिया जा रहा है जहाँ यूरोप और चाइना इवन उनकी पूरी इकोनॉमी कोल बेस्ड है, और खासकर लड़ाई के बाद उन्हें पूरा कोल पे आ गए, और वहीं इंडिया जो पहले शायद 5-7 साल पहले हम भी यही बात कर रहे थे, पर अब हमने शिफ्ट होके सोलर पे आ गए, तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें 0 कार्बन पे आना है मिनिमम, और नेचुरली कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपकी तो क्लाइमेट चेंज में मिनिमम होगा या कम हो जाएगा। तो और यदि वो होता है तो हैजार्ड्स कम होंगे तो आपके जो पैसा और उससे जो नुकसान होता है और वो रिलीफ में जो पैसा था वो बचेगा, और वो पैसा फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से,
1: और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये फुल साइकिल आपने चर्चा की। आनंद शर्मा जी, 25 सालों का अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और जो अनुभव वहां से उन्होंने इकट्ठा किए उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने लागू किया, और उसके जो परिणाम हैं आज हम वो देख रहे हैं।

0: हम कई देश में, शहरों में, कई राज्यों से जब गुजरते हैं तो घरों की छतों पर लगा हुआ सोलर पैनल इस बात की गवाही देता है। आज कई राज्य हमारे, कई शहर जो हैं, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। और आपने अभी जिस पूरी एक साइकिल की बात की, देश के विकास में किस तरीके से लोगों के बिजली की बिल में जो बचत हो रही है, वो पैसा अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ावा दे रहा है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका कि ये क्या जो सोलर पैनल हैं घर घर में, कहाँ तक हम पहुँचे हैं और आगे 5 से 10 साल में हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं?
1: नहीं देखिए, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि पूरे वर्ल्ड लेवल पर चले तो इंडिया की प्रोग्रेस सराहनीय है। और कुछ स्टेट जो है बहुत ही बढ़िया, चूंकि ये पहला स्टेप गुजरात में लिया गया तो गुजरात तो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। आपने अभी एक वो पार्क की बात करी, वो उसके अलावा खेवड़ा जो है सोलर पार्क है, वो तो बहुत ज़बरदस्त उसके कहते हैं 30 गीगावाट, जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई थर्मल पावर उतनी एनर्जी जनरेट करने वाला है, जो कि करीब करीब मुझे लगता है 5,300 एकड़ में फैला हुआ है। और आप में शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक जनरेशन वाला रीजन होगा। तो एक ये बहुत बड़ी पहल है। और आपने भी सही कहा, कुछ दिनों में ये गुजरात जो होगा सरप्लस स्टेट में होगा। और वो यही नहीं कर रहे, उसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ शुरू कर दिया है, मतलब कि पानी भी होगा आपके पास, ऊर्जा भी हो सकता है, और वो सब ये मार्जिनल लैंड में जहाँ कुछ ग्रो नहीं करता था। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि वो वाली कोई अच्छी वाली, कई बार लोग कहते हैं ना उपजाऊ भूमि खराब हो गई, वो भी नहीं, ये तो मार्जिनल लैंड थी, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है। और हु नोस कि कल को उसी के नीचे कुछ और पानी हार्वेस्ट हो जाएगा तो कुछ और लगने लग जाएगा। तो ये सोलर पैनल बड़ी अच्छी प्रयास है और मुझे लग रहा है इसको जिसे वार फुटिंग पे मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस को अभी जो हाल ही में एनर्जी क्राइसिस हुआ है, तो हर घर पे, हर बिल्डिंग पे ये जरूर दिखने चाहिए और वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये होता है तो हम लोगों की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल की वो करने के लिए, वो भी खत्म होगी। और जब एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा और आप एक सुपर पावर भी बन पाएंगे।
0: बिल्कुल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में जो सौर ऊर्जा की क्रांति हुई है, काफी घरों की छतों पर अब हम देखते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है और हर घर लगभग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब ये नहीं है कि बिजली आएगी गाँव में, पोल लगेगा तब होगा, लोग बड़े आराम से उसको लगा रहे हैं और सरकार सहयोग कर रही है। तो इन 12 वर्षों में अगर सिर्फ सोलर पैनल की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कहां से कहां हम पहुंचे हैं?
1: एक समय ऐसा आ रहा था कि नेचुरली आपको मालूम होगा कई प्रदेशों में तो बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो मात्र 3-4 घंटे रहती थी। अब क्या है, लोग इंडिविजुअल अपने यहाँ जब से लगाने लगे हैं तो उनके पास अब घर में बिजली भी आ रही है, और नेचुरली बिजली होगी तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपके सोलर पंप हैं, आप पानी भी निकाल पाएंगे, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक समय भी ये बात हो रही थी कि ऑफ द ग्रिड, मतलब आपको मेजर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर पैनल लगाइए और अपनी बिजली खुद पैदा कीजिए। और अब जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो फिर बात हो रही है कि ये वाली जो ग्रिड है ऑफ ग्रिड नहीं, इसको मेन ग्रिड से, मतलब आप खुद तो अपने घर का खर्चा निकालेंगे ही बिजली का और बेचेंगे भी सरप्लस को। तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कहीं जहाँ ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन ग्रिड,
0: मतलब आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं निशुल्क और साथ ही पैसे भी कमा रहे हैं।
1: पैसे भी कमा रहे हैं,
0: बिल्कुल। आनंद जी, आपसे एक सवाल और है कि जलवायु परिवर्तन जो है आज केवल पर्यावरण का विषय ही नहीं रहा, बल्कि कृषि, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कृषि है, स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
1: जी,
0: भारत में बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए, कहीं बहुत तीव्र गर्मी है तो कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल विकास की क्या आवश्यकता है और मौसम विज्ञान विभाग इस दिशा में किस प्रकार से योगदान कर रहा है?
1: देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात हो रही है वो एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो कि कंबाइन करती है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये दोनों चीजों को अलग अलग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करेंगे आप तो यू विल बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सोसाइटी, मतलब कि अडेप्टेशन है एक तरफ आपका मिटिगेशन है, और ये साथ में जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिक गोल तो क्या है कि हमें, यदि आपको क्लाइमेट एक्शन जो है उस पर मेजर फोकस है, और क्लाइमेट एक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन में मीन्स है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, नेचुरली आपको ये तो मालूम ही होगा, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सबको बड़े घर चाहिए, कारें चाहिए, रहन सहन की और सहूलतें चाहिए, तो जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करते हैं, और उसके चलते जो होता है

0: ग्लोबल वार्मिंग होती है और वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज से नेचुरली जब क्लाइमेट जल्दी से बदलेगा और जबरदस्त बदलाव आएंगे तो चरम सीमाएं मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी सूखा होगा, कभी फ्लड होंगे, कभी हीट वेव होगी। तो ये सब करने के लिए, इसको बचने के लिए हमें मिटिगेशन बड़ा जरूरी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करें, यानी कि हमारा जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें आगे चलना है। मिटिगेशन आ गया ये पहला। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि जहां भी कोई रिस्क है, समुद्र के पास है, गुजरात की बहुत बड़ी कोस्ट है या ज्यादा पूरा इंडिया में इतनी, वहां पे सी लेवल राइज का खतरा लोग कह रहे हैं, साइक्लोन का खतरा रहता है, तो ये जो खतरे हैं उसमें कहाँ रिस्क है वो रिस्क को जानना, और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यदि आप सही समय पे आपको रिस्क मालूम है और आप हजार्ड को प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसकी वार्निंग जनता को देते हैं, उनको समय पे हटा देते हैं, तो जान माल आप बचा लेंगे। और यदि आप ये कर लेते हैं तो वही बात होगी, आपका पैसा बच गया, वही पैसा डेवलपमेंट में जाएगा जो कि रिलीफ में जा रहा था पहले। तो यही अडेप्टेशन और मिटिगेशन है, और जब अडेप्टेशन मिटिगेशन ढंग से होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, हर बार हैजार्ड आएगा, आपने प्रेडिक्शन नहीं किया, हजारों जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ेगा और आपका पैसा रिलीफ में जाता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हमारी चॉइसेस होनी चाहिए, यानी कि ये है कि ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे तो वो उसके चलते क्या हुआ, घर ऐसी जगह पे बना दिया कि वो हैजार्ड बाढ़ में बह गया। तो आपस में इन सब में लिंक्स होने चाहिए अक्रॉस द पॉलिसी, मतलब हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक को फिक्स करते हुए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो आपस में एक इंटेग्रेटेड वो रहना चाहिए, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्लियर इम्प्लीमेंटेशन जो गैप है उसको क्लियर करना है। अभी क्या है कि कई चीज़ें तो हम बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उनको, बट उसको अभी शायद उसका कार्यान्वयन करने की बहुत स्कोप पड़ा है हमारे पास, और यदि वो हम करते हैं तो ये गैप जो है हमारे गोल में और एक्शन में अभी थोड़ा गैप है, उसको पूरा करना होगा।
1: आनंद शर्मा जी, सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर उपकरणों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की है। पहले हम इसे आयात करते थे, अब उत्पादन तो हो ही रहा है, और इसके उत्पादन में जो सामान लगता है, जो उपकरण लगते हैं, उसका निर्माण भी हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से आप अभी बात कर रहे थे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि ऐसा था, अभी जब हम कुछ साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले, तो एक्चुअली जितने भी सोलर पैनल थे हम सब लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, और इम्पोर्ट कर रहे थे वो तो एक चीज़ थी। उसके बाद में जब से फिर ये चला आगे को, तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सवाल आया कि भाई दिन में तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और रात को तो नहीं है, तो इसको स्टोर कहाँ करें एक्स्ट्रा को? तो उसके लिए बैटरीज की बात आई, लिथियम बैटरी, वो भी हम कहाँ से इम्पोर्ट कर, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, तो हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग जा रहा था। अब यह है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है अब हमने ये सोलर पैनल्स इंडिया में बनने लग गए हैं, और ऐसे ही बैटरीज भी बनने लग गए हैं, मगर फिर भी आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लिथियम हमें जो है उसके लिए, और सिलिका जो कहते हैं हमें इसके लिए चाहिए सोलर पैनल्स की, इन दोनों पर आज भी हमें निर्भर होना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। तो वो निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी, इनोवेटिव कहते हैं हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलप करनी पड़ेंगी स्टोरेज के लिए, और पैनल्स बनाने के लिए भी हमें मतलब सिलिका से जो है जो उस पर डिपेंडेंस है उसको खत्म करना पड़ेगा। यदि वो हम खत्म कर पाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की हमारी भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, तो हम शीघ्र ही उसमें भी मतलब कि अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे सामने में, और ऊर्जा में तो डेफिनेटली आ ही चुके हैं, और ये तो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। सिर्फ हमें जो दो करने की जरूरत है वो यही है कि लिथियम ये जो बैटरीज हैं वो भी हम पूर्ण अपने मतलब कि खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाएं उसमें भी, और पूरे पैनल को बनाने से लेकर उसके जो उसमें जो सिलिका जो भी पार्ट लगते हैं उसमें भी हम पूर्ण सेल्फ रिलायंट होना हमें जरूरी है अभी।
1: और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में मिशन लाइफ क्या है।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और तकनीक के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, और टिकायु खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में अब तक 40 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 7,30,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए देश भर में 12,00,000 से अधिक इको क्लब भी मिशन लाइफ के तहत काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ का संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। मिशन लाइफ इसी सोच

0: को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है और टिकाऊ जीवन शैली को जन भागीदारी से जोड़ता है।
1: आनंद शर्मा जी, इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आम नागरिकों की दैनिक आदतों, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ उपभोग की कितनी भूमिका हो सकती है और इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मौसम विभाग और पर्यावरण जागरूकता की खास तौर पर क्या भूमिका आप देखते हैं?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जो आपका COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहाँ ये इन्होंने ये इनिशिएटिव जो था लिया था और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। और इसका बेसिकली जो मेन है टू प्रमोट माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिड्यूस माइंडलेस कंजम्पशन। तो अभी समय क्या हो रहा है, माइंडलेस कंजम्पशन हो रहा है, जबकि होना चाहिए माइंडफुल कंजम्पशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी। दूसरा है कि अभी तक हम कर रहे थे यूज एंड थ्रो, यूज करो और थ्रो करो, और उससे क्या हो रहा है गार्बेज और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है। तो उसको अब चेंज कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि आप कचरा भी पैदा करेंगे तो उसको सेपरेट भी करेंगे और उसको आप रीयूज करेंगे। जैसे कि आपका वेस्ट निकल गया बायोमास, उससे आप बायोमास से आपने एनर्जी निकाल ली, आपने उससे आपने कहते खाद बना ली, आपने उसको मल्च की तरह यूज कर लिया खेती में, ये बहुत सारे बेनिफिट हो गए उससे, बायोगैस बना ली आपने। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में सब आ रहा है और उसमें पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना SOP बनी है बड़े अच्छे ढंग से कि हर चीज़ को मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी और आपका वेस्टेज भी मिनिमम होगा। और ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को। और इसमें फोकस क्या है, फोकस है आपका प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हर जो नागरिक हो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवली प्ले करेगा कि भाई मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रो प्लैनेट पीपल, वो इसका मेन फोकस है। तो उसमें आपने पूछा कि मौसम विभाग और पर्यावरण विभाग का क्या रोल हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज की स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज़्यादातर लोग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस है, एयर कंडीशन स्कूल है, एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन कार है, तो वो नेचर से जो है हमारी प्रकृति से कट ऑफ हो गए हैं। इसको मैं इसको कहता हूँ नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर हो गया कि उसको प्रकृति में पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है बाहर। तो जब वो पता ही नहीं तो वो उसको कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसको पता ही नहीं मेरी यमुना नदी खराब हो चुकी है, मेरे लैंडफिल इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। पहले उसको कनेक्ट करना है, किताबी ज्ञान से ये लोग सीख नहीं पाएंगे पर्यावरण के बारे, उनको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक चीज। दूसरी बात, जब कनेक्टेडनेस कैसे होगी, जब उनको समझाना पड़ेगा भाई देखिए आप जब एक्स्ट्रा कोई पॉलीथीन लेते हैं या आप एसी को ही आप कहते हैं करना चाहिए, आपने 18 डिग्री पे लगा के रखा है, यदि आप उसको 24 डिग्री पे करके रखते हैं बिजली बचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए बिजली कहाँ से आ रही है
1: और आप अपना स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं,
2: स्वास्थ्य भी बचा रहे, सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज लिंक्ड। बिल्कुल, स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं आप। और जब आपने और इसको ये मालूम होना चाहिए पॉलीथीन कहाँ जा रहा है, ये नदी में जा रहा है, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फिश वगैरह में जा रहे हैं, उसी को लोग खा रहे हैं, तो कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ये सारा कनेक्टेडनेस जो है इकोसिस्टम की, इकोनेस आइसोलेटेड नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ये जब हम समझाएंगे और बताएंगे वही पॉलीथीन को आप जला रहे हो तो फिर CO2 गैस निकल रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है और आप पिछड़ते रहेंगे क्योंकि आपका सारा पैसा तो कहते इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा आपका, फिर आप उसी में पैसा लगाओगे तो नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नई यूनिवर्सिटीज आप कैसे खोलेंगे।
1: बिल्कुल,
2: ये कनेक्टेडनेस जब लोगों को ये समझ आ जाएगी सिंपल भाषा में कि भाई हाँ ये तो मुझे तो प्रो प्लैनेट पीपल बनना है,
1: बिल्कुल
2: मुझे है ना, मेरे को धरती पे अपना बोझ कम से कम करना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम कितना पानी डेली यूज कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लोग नहीं बता पाते, कोई कहता 10 लीटर, कोई कहता 50 लीटर, जबकि वो 500 लीटर कर रहे हैं। तो वही जो है ना,
1: दे आर नॉट माइंडफुल, उसके बारे में माइंडफुलनेस
2: जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइंडफुलनेस लेके आनी है उनमें, कि उनको रियलाइजेशन हो कि भी हम कर क्या रहे हैं। आजकल के दिखा होगा जो बच्चे हैं हर उठाते हैं फोन से सामान पे सामान आ जा रहा है और आप देखेंगे तो दिन भर में इतना कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा वो कचरा, वो सारा फिर वो आप जला देंगे कहीं ले जाकर, सेग्रीगेट तो सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कर दिया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वही उनको समझाना है ये फेंकना नहीं है, इसको रिसाइकिल करना है। और काफ़ी इसमें पहल हो रही है, काफ़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, आजकल तो कपड़े भी मिलते हैं आपको बोलते हैं रिसाइकल्ड है ये कपड़ा या ये बैग है जो रिसाइकल्ड हो रहा है, मगर इसमें एक और भी ध्यान रखना कि ग्रीन वॉशिंग ना हो, कि बोल रहे हैं कर नहीं रहे हैं, करना है, करके दिखाना, क्योंकि अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
1: आपने सही कहा, पॉपुलेशन बड़ी है क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इसकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है, कहाँ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम

0: और नागालैंड, और कहाँ केरल, और कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ गुजरात, कच्छ, इतना बड़ा देश है। अब ऐसे इतने बड़े भौगोलिक देश में एक्सट्रीम वेदर्स की भी समस्या है, कहीं हीट वेव है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, बाढ़ है, कहीं चक्रवात है। लेकिन पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव रहा है उस पर चलते हुए उनके नेतृत्व में इन सब चीजों पर खास तौर पर ध्यान देना शुरू किया है। हमने ये भी देखा था एक वक्त पर कि आईएमडी, आप वहां रहे हुए हैं एक बड़े पद पर, आईएमडी जब कहती थी कि बारिश होने वाली है, बारिश होती नहीं थी, और उनके कई सारे जो पूर्वानुमान होते थे वो या तो सटीक नहीं होते थे या कई बार गलत साबित होते थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूर्वानुमान की सटीकता सही रही है, समय बद्धता में सुधार हुआ है, आम नागरिकों तक चेतावनी भी समुद्री इलाकों में बड़े समय से पहुंच रही है। आईएमडी ने ये कैसे किया, क्या रणनीति है?
1: इसमें बहुत सारी चीजें, आप किसी से पूछेंगे मीडिया से तो एक एक्सेलेंट फोरकास्ट मेरी, चाहे वो मैं कर्नाटका में था, चाहे मैं सिक्किम में था, चाहे मैं देहरादून में था, दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके पीछे सब कुछ है कि निरंतर प्रयास। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पिछले 15 साल में तो बहुत तेजी आई है इन प्रयासों में, पर पहले भी प्रयास हुए हम लोगों को, जो जिस तरह से मतलब सुपर कंप्यूटर 87 में आ गया था, उसका एक मेजर रोल रहा, सबसे मेजर रोल रहा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर दे नहीं रहा था, फिर सुपर कंप्यूटर मिला और उस सुपर कंप्यूटर के चलते जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन शुरू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा रोल लाया। दूसरा सैटेलाइट जो आए, सैटेलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, डॉपलर वेदर रडार आ गए, मगर इनके नंबर कम था डॉपलर वेदर रडार का, सैटेलाइट में भी कुछ इतने सेंसर्स नहीं थे जितने हम मौसम विभाग को चाहिए थे। फिर वो जब बोला गया और बीच में, तो ये पिछले 10-15 साल में इनमें बहुत भयंकर तेजी आई, यानी कि मतलब काफी पैसा इसमें गया और नए सुपर कंप्यूटर्स लिए गए, नेटवर्क को बढ़ाया गया। डॉपलर वेदर रडार जो है मेरा ख्याल अभी 25-30 लग चुके हैं और मेरा ख्याल 100 इनका नंबर पहुंचने की बात हो रही है अगले कुछ 1-2 साल के अंदर। तो इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं और बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले लोग बोलते थे ऐसा कि भाई मौसम विभाग जो बोलता है गलत, पर अब नहीं है, अब काफी सालों से 15-20 साल से ये धारणा बदली है और रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत लोगों की जानें बच रही हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी जो प्रयास हैं ये हमारे जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी सोसाइटी को रेजिलिएंट बना रहे हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और मानसून का कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के वितरण, तापमान और मानसून के व्यवहार में होने वाले बदलाव किसानों के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, कृषि मौसम सेवाएं, जिला स्तर के पूर्वानुमान और समय पर सलाह किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, और क्या नई तकनीक और आईएमडी लेकर आ रहा है?
1: ये सवाल बहुत बढ़िया है। आपको एक तो मालूम है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी पौधों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, वाटर सिक्योरिटी का भी इशू होगा, भाई नेचुरली जहां बारिश नहीं वहां सूखा पड़ेगा। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। आप देखिए, हालांकि इस साल थोड़ा प्रोडक्शन में कमी हो सकती है क्योंकि एल नीनो ईयर था, मगर उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से मौसम आधारित कृषि सलाह लोगों को मिल रही है, जिस तरह से कहते हैं ICR ने ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज डेवलप करी हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल है, समय समय पर यदि किसान को मौसम आधारित सलाह मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अभी ये बारिश आने वाली है, तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे देखो किसान भाइयों आपकी फसल जो तैयार पड़ी है 3 दिन में बारिश आने वाली है, तो आपकी तैयार फसल को काट के सुरक्षित स्थान पर रख लो, तो नुकसान बच गया उसका। ऐसा ही है, मान लीजिए किसान को इस समय फसल है उसमें फ्लावरिंग आ रही है जैसे महाराष्ट्र में, और बारिश मान लीजिए कि आने वाली है, तो आप कहोगे किसान भाइयों को देखिए भाई बारिश आने वाली है तो आप सिंचाई को टाल दीजिए, तो आपका सिंचाई का पैसा बच गया। सिमिलरली बारिश आने वाली है और आपने मान लीजिए आप फर्टिलाइजर और केमिकल लगाने वाले हैं, तो हम उन्हें कहेंगे नहीं भाई बारिश आने वाली है आप फर्टिलाइजर और केमिकल अभी ना लगाएं, नहीं तो वो पानी से बह जाएगा। तो ये जो मौसम आधारित कृषि सलाह है इसने बहुत फायदा किया है और यही एक कारण है कि वी आर एबल टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर यील्ड्स। नहीं तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, तो यही कहा गया था कि भाई एपिडेमिक्स होंगे, और यही नहीं क्योंकि हम समय समय में उनको बता दे रहे हैं कि अब ये मौसम जो है अनुकूल हो गया है पौधे पे बीमारी आने का, तो आप मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए मगर स्प्रे मत करिएगा अभी, जब वो थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे आपको जब स्प्रे करना है आपको, और हो सकता है कि मौसम पौधे के लिए अनुकूल हो जाए और बीमारी जो पेस्ट होता है उसके लिए विपरीत हो जाए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्प्रे करने की। तो केमिकल स्प्रे को भी बचा रहे हैं हम लोग, और वही स्प्रे जो केमिकल के पानी में जाते हैं, मच्छी में जा रहे हैं, फिर लोग उसको खा रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। मौसम आधारित जो कृषि सलाह है उससे हम किसान का पैसा बचा रहे हैं, लोगों की हेल्थ बचा रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं।
0: और देखिए

0: भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना हुई। आज ये सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और विकासशील देशों में निवेश और तकनीक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, जिसका हम लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। यूरोप के कई देश अगर आप देखें, जैसे डेनमार्क, तो वहां पर पवन ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं, इनका संतुलित मिश्रण कितना जरूरी आप मानते हैं? क्या पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं?
1: नहीं, उसमें भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, मगर हम सोलर एनर्जी में ज्यादा हमने मतलब कि उसमें अचीवमेंट है हमारी। और बिल्कुल आपने कहा कि हमें मिश्रित चाहिए, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, हमको विंड एनर्जी भी चाहिए, हमको ओशन वेव से भी करना है। यदि हम ये सब कर पाते हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 2009 में गुजरात क्लाइमेट सेंटर से लेकर 2015 में जो हमारा COP 21 हुआ था पेरिस में, वहाँ ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वो एक बहुत ही दूरदर्शिता थी उसके अंदर, और मुझे लगता है 140 कंट्रीज उसके मेंबर है, जिसे सनशाइन कंट्रीज कहते हैं। और बिल्कुल उससे काफ़ी बल मिला और हमें लीडरशिप एक मिली। और अब भारत सरकार जो है बिल्कुल बायोमास पे जो है पूरा फोकस है उनका, बायोफ्यूल्स। फिर वही मैंने कहा कि वो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे मार्जिनल लैंड्स पे लगाए जाएंगे, और जो एनर्जी क्रॉप्स होंगी जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा था, उसके साथ जो आपकी यूज कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमीथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टी, जिसे कहते हैं प्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, सिर्फ एक पे निर्भर नहीं होना है। सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जितने पॉसिबल हैं उसको एक्सप्लॉइट करना है और टू द मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए, और हमारा टारगेट है टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो इमिशन, ये हमारा गोल है।
0: सौर ऊर्जा में तो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्या विंड एनर्जी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं भारत में?
1: नहीं, चुनौतियाँ देखिए, सोलर एनर्जी में तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, पूरे एक कोने से दूसरे कोने सनशाइन रहता है, ब्राइट सनशाइन रहता है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मगर विंड एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको वहां पे विंड तेज चलेगी वहीं लगाया जा सकता है, या तो कुछ कोस्टल सिटीज हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर आपको। और इसके लिए ये अगेन मौसम विभाग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे पास विंड एटलस है, सोलर एटलस है, जहां बताया जाएगा आपका कि भी कहां आपको लगाना है कहां नहीं लगाना है। सोलर एनर्जी के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विंड के लिए कोस्टल सिटीज पे लग सकता है, और कोस्टल सिटीज में भी हमें ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे तो वहाँ साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन आएगा तो वो नेचुरली बहुत तेज होगी स्पीड, 150-200-250 की, तो उखाड़ भी सकता है। मगर हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम विंड स्पीड जो 250 आती है करीब, तो उससे जो है ज़्यादा की ताकत का हमें वो स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करना है, जिससे कि वो आ भी जाए तो रेजिलियंट होगा, वो टूटेगा नहीं।
0: विंड एनर्जी के लिए हवा की स्पीड एक आमतौर पर कितनी होनी चाहिए?
1: देखिए, कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो होनी ही चाहिए, तो वो आम ज्यादातर जगहों पे आपको नहीं मिलती है, वो आपको कोस्टल सिटीज में मिलेगी, या हाइट, जैसे जब हाइट ऊपर जाते हैं हम लोग तो विंड स्पीड बढ़ती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यदि आप 12 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो हवाएं चल रही हैं 150 किलोमीटर की स्पीड से, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस होता है तो विंड स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ खुला इलाका होता है तो वहाँ विंड स्पीड ज्यादा होती है।
0: तो हेडविंड और टेलविंड जो होता है वो 80-100 बहुत आम
1: बात है। और आपने देखा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी हुई थी, कि जब अमेरिकन प्लेन्स जब कहते हैं जा रहे थे, कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो वो फास्ट जा पा रहे थे, मगर जब वो ईस्ट से वेस्ट लौटते तो उनको ज्यादा समय लगता था। तो उन्होंने देखा क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड उनको जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट जाने में मदद करती थी उनको, और जब आते थे तो अगेंस्ट
0: हेडविंड होगा तो वो ज्यादा वक्त लगेगा। आनंद शर्मा जी, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले दशक में भारत की हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी को एकीकृत कर यानी इंटीग्रेट करके भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है?
1: नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लीडरशिप तो ली, और एक और भी ध्यान रखिए, आज से 1000 साल पहले भी भारत जो था, देश जो था, हमारा जिस तरह का कल्चर था, हम लोग कंजर्वेशन में, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन में लीडर थे
0: जी,
1: पर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, और अब फिर दोबारा से हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडरशिप का रोल अब निभा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, हम डेफिनेटली जो है इस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास हो, उस सब में हम बिल्कुल कहते हैं सक्षम हैं। मगर हाँ, प्रयास ये है कि लोगों को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको ये समझाएंगे नहीं पूरे साइकिल को,

0: कि किस तरह से काम करता है, और ग्रीन वॉशिंग ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलरली हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके लिए आपको जितनी सब्सिडी देनी है सब्सिडी दीजिए, टैक्स रिलीफ देना है टैक्स रिलीफ दीजिए, मगर हर कॉस्ट पे हमको पर्यावरण को बचाना होगा कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी,
1: हर कॉस्ट पर पर्यावरण को बचाना होगा और तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा केवल भविष्य की जरूरत नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद शर्मा जी, आप अतिरिक्त महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
4: मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रहीं, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रहीं और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक के निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

0: कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारीख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारीख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।
1: रंग

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारिक की यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर

फिर नादान समाधि राखी और हथकड़ी हीरा अनजान राहें रानी और लाल परी जख्मी उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

0: सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांताक्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।
1: हाय

आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले। आज के

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कुछ विज्ञापन।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

गिरह का जश्न विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आप सुन रहे हैं विविध

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 0222867 0288। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 0224002462। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए

0: भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
1: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बस यही कहना चाहता हूँ कि विविध भारती ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और विविध भारती से सीखकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं वो मनोरंजन तो उनमें होता ही है लेकिन ज्ञान से भरपूर होते हैं।
1: जी बहुत शुक्रिया। बताएं गुना शहर की क्या स्थिति है, बारिश वारिश खत्म हुई है?
0: इस बार बारिश तो कम हुई है सर, लेकिन हाँ फसल तो अब पककर तैयार हो गई है और कट रही है, कहीं कहीं कटने को भी तैयार है। और मक्का की फसल ज्यादातर होती है, पहले सोयाबीन की फसल होती थी लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो फिर किसान भाई मक्का की फसल लगा रहे।
1: अच्छा अब बताइए आप कौन सी फरमाइश लेकर आज हाजिर है?
0: जी फरमाइश है मुकेश और लता जी की आवाज में शोर फिल्म का गाना है एक प्यार का नगमा है मोजों की रवानी है।
1: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये

0: गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा,
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा, क्या बात है। और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर
0: जी।
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी, तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है।
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंगरू पायल के।
0: ओहो क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश की है आपने। तो चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना बीकानेर में।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजहा धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है, बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राजा का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई, ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग रही है।
1: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में, अच्छा लगता है, निराश

0: हो रहा है।
1: अरे भैया, हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं, ये दुनिया, ये महफिल काम की नहीं। हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
0: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे। इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे
1: अच्छा,
0: और आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी। हमने सोचा कि फोन लगाएं आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप पे सुनते हैं।
1: अच्छा, ये बताइए, खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
0: हाँ सर, एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इस समय हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है।
1: अच्छा,
0: आंधी तूफान आया जिस

0: बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी, बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम उस जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाज जो है धीमी हो जा रही, फिर तेज होती थी, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, FM पे चलता था हमारे यहाँ
0: जी।
1: फिर वो FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे, शॉर्ट वेव मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए एक तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे, तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो 7 क्लियर FM यहाँ हमारे यहाँ प्रयागराज 14.3 MHz पर सुनाई दे रहा था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM से बिजली बचता था, वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे हम कच्चा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने।
0: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
1: जी, आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहेगी भी शुरू हो गया है, जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो था वो तो एकदम समझो मजा अच्छा। आ जाता है सुनकर।
0: अरे बहुत शुक्रिया, तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
1: गाना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
0: बस ऐसे जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे, ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना
1: सर,
0: सुनिए।

0: मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
0: हाँ बढ़िया सर।
1: और इंदौर की क्या हालचाल है?
0: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
1: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
0: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, अभी थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
1: अच्छा अच्छा, और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
0: सर मैं रेडीमेड का सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
1: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
0: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
1: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
0: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
1: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
0: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना, उनके सराफी मतलब गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनका कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
1: हाँ
0: तो भी सुनते हैं।
1: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
0: सर हमारे यहाँ सराफा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टे का केस वगैरह अच्छा चलता है,
1: और वो कचौड़ी।
0: बिल्कुल यहाँ पे कचौड़ी और समोसे ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
1: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं, यहाँ का
1: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
0: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
1: अच्छा, तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे।
0: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
1: बहुत सही।
0: ये गाना सुनना सर मुझे।
1: कौन सा?
0: राजा और राम की मूवी का, मेरा नाम है चमेली।
1: ओके, क्या बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंक फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइशें आती हैं।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं और मैं

0: आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
1: अच्छा ऐसा है। हाँ भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
0: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
1: अच्छा अच्छा बताइए क्या हालचाल है आपके?
0: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
1: जी।
0: और आरपी से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
1: जी।
0: और 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 100-200 फोन लगाए होंगे सर कम से कम।
1: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
0: और जितने भी आरजे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हो, शहनाज जी हो, चाहे ममता जी हो, जितने भी आरजे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
1: और मेरे से?
0: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
1: अच्छा
0: सर क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाया, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
1: अच्छा बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
0: सर अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है। खैर पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
1: नहीं लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर,
0: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
1: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
0: जी सर, जी सर।
1: वो जलवे कायम है?
0: हाँ सर जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है और नमक वाली चाय भी कायम है और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर। वो
1: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
0: जी जी सर।
1: क्या बात है
0: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
0: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर यूँ चलना देना यूँ छोड़कर।
1: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज आपके लिए ये गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, मैं गांव लिहे डिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सोहन बात कर रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
0: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
1: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, पर खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को।
0: जी, कुछ जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
1: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
0: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना।
1: सही बात है सर, परेशान हो रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
0: जी जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हमारा फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है,
1: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश?
1: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
0: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया,
1: मेरा नाम रामेश्वर अकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हाल चाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2 दिन वहाँ पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या हो गया एक्सीडेंट, कैसे हो गया?
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हो गया ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थी सर, डिपो में, यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है, सलामती है?
1: सर फट गया था सर, अभी 2 महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर।
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ ठीक से नहीं चला रहे मालक?
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी है।
0: है ना, हम सब लोगों से जे कहेंगे कि सड़क पे निकले तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाए, और का
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
0: दूसरी बार, हमें तो याद नहीं है
1: सर, अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे अमियां लग गई आम में कि नहीं लगी।
0: अरे हो अमियां, गर्मी के मौसम में बात हुई?
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के का हालचाल, आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर।
0: अच्छा अच्छा
1: सर, वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा, तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
0: नहीं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
1: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं, तो आप तो जानते ही होंगे।
0: हाँ, थोड़ी थोड़ी, हाँ अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर।
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही है, ये बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या

ताना ये सोला साला तंदाना है तेरे ख्याला तंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ।

तो जाता तंदाना, क्यों पास न आता तंदाना, क्या मारिय बाता तंदाना, दिल तोड़िए घाता तंदाना। तो मैं किधर को जाता तंदाना, क्यों पास न आता तंदाना, क्या मारिय बाता तंदाना, दिल तोड़िए घाता।

ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक झाला आमको तक झुक तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारिता जग तारिता झन जाने को गुदारी दागु तारी के ताली झम तारिता जग तारिता झन जाने को गुदारी दागु तारी के झम तारी जग तारी जग नक नक तक झुम तक झुम तक झम तारी जग तारी जाने जाने को

मैं मानो गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ। सर
0: कैलाश जी कैसे हैं?
1: बस सर एकदम मस्त है। सर यूनुस जी आपकी आवाज़ तो हमारे दिलों में बसी है बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
0: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
1: बिल्कुल सर आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
0: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाश जी?
1: प्रोग्राम तो सर एक सफर का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
0: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
1: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहे, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर इससे, विविध भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाशी?
1: जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और कई वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़े टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं हैं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है सर।
0: हाँ।
1: और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा,
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा,
1: और जब जब समय मिलता है सर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज, और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइन है।
0: इरशाद,
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर
0: जी। नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड़ से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं, विविध भारती के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी, बहुत बहुत
1: सर। और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों का कातिल सर।
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल, कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेतांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नज़र में?
1: सर मेरी नज़र में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के

0: आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में जो भूले बिस्तर गीत, और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
1: हाँ जी,
0: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
1: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: सर देखिए, विविध भारती हमारे दिलों का राज करता चला आ रहा है एक जमाने से
1: जी,
0: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे चलते रहें, और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
1: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
0: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: वाह भाई वाह,
0: तरह के गाने के बोले सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 4002462।

0: रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये इल्तिजा कि जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी अलवर का साइज का चैनल है। लीजिए श्रोताओं सुनते हैं ये विज्ञापन।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: लीजिए श्रोताओं सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

आवाज़ में मीरा बाई का ये भजन आपने सुना। इसे हमने एल्बम गांधीज फेवरेट भजन बाई लता मंगेशकर से आपको सुनवाया। आइए अब सुनते हैं हनुमान अंश फिल्म से ये पारंपरिक रचना। ऋषि पाठक के बोल हैं, माफ़ कीजिएगा, ऋषि पाठक की आवाज़ और उन्हीं का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द खजाना कॉन्सर्ट। इस एल्बम से आपने सुना अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और प्रणव बिस्वास की आवाजों में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आपने सुना। स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में पिया बसंती एल्बम से गीत आप सुन रहे थे, संगीत संदेश सांडेले का।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुष्ट। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: सोचना था इस एल्बम इस गीत से आप माफ कीजिएगा इस फिल्म से आप सुन रहे थे केके की आवाज में गीत इरशाद कामिल के बोल संदेश शांडिल्य का संगीत
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक
2: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ
1: अन्नू मलिक की बातें गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न
4: बंदा ये बिंदास है बंदा ये बिंदास है
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग

0: वेल डन अब्बा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इला अरुण और साथियों की आवाजें, इला अरुण और डेनियल जॉर्ज के बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत। कल इला अरुण भी होंगे हमारे साथ लाइव विविध भारती की सालगिरह के जश्न पर।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। मिर्ज़िया डेयर टू लव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मिमी खान और शंकर महादेवन की आवाजें, गुलजार के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबूक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सचिन देव बर्मन का संगीत मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से ये गीत आपने सुना।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अभिनेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी की बोल आपने सुने, शंकर जयकिशन का संगीत लव इन टोक्यो फिल्म के इस गीत में। आपको बता दें आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पत्रकार की बातचीत की ये एक लंबी श्रृंखला है जिसकी आज 13वीं कड़ी आप सुन सकते हैं। और रात 8 बजे हवा महल में सुनिएगा रूपक महान आत्मा, लेखन और निर्देशन गुरमीत रामल मीत का। इस वक्त विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर

0: सजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: नेत्री आशा पारेख के जन्मदिन पर आज उन्हीं की फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में शामिल है।

0: तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज इस कार्यक्रम में अभिनेत्री आशा पारेख अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं।

जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: मेरे सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, ओपी नैयर की तर्ज।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: फिर वही दिल लाया हूँ। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,

0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज पर ये गीत आप सुन रहे थे असर जयपुरी के बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म कन्यादान।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

दो बदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। रवि की तर्ज शकील बदायूनी के बोल। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आनंद बख्शी के बोल के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत सुनते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इधर प्रदेश

भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में सचिवालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री गांधी सर्किल पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 122वीं जयंती है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शास्त्री जी की जयंती पर विजय घाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ देश के अन्नदाताओं और सीमा के प्रहरियों को देश की शक्ति और गौरव का प्रतीक बताया। देश भर में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। इधर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। इन ग्राम सभाओं में नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में पात्र और नव मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, स्कूल और कॉलेजों में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। श्री महाजन ने सभी पात्र नागरिकों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील भी की है। विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत आज जैसलमेर की गढ़ीसर झील पर सेवा मेरा योगदान थीम पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। झील और इसके आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक, कचरा और झाड़ियों को हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर गढ़ीसर पाल पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक धरोहर और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ, सुंदर तथा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। प्रदेश में मॉनसून की विदाई का दौर भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मॉनसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 33-40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 20-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहियान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। अनुभवी अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और 17 वर्षीय कुमकुम मोहोद ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

दिल भी तेरा हम भी तेरे, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। हमने आवाज़ ही किसकी है पहचानने के लिए कहा था और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हमारी गलती ना हो उस समय यदि कोई गलत ठहराने लगे तो बड़ा दुख होता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्म से लेकर नदी होने तक किसी न किसी को बिछड़ने का डर, जब दर्द हद से गुजर जाए तो परिस्थिति हो या इंसान को तोड़ देती है और सारे दुख दर्द को गले लगाकर खुद को मजबूत बनाकर इंसान जीने लगता है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, हम बताते हैं कि उन्होंने क्या बताया है हमें गम और दर्द के बारे में और किस तरह से वो उससे निजात पाते हैं। हमारे एक साथी कहने, गम आने वाली खुशियों की आहट देता है, दर्द जख्म के ठीक होने की राह देता है, तन्हाइयों का तो क्या जनाब, वो खुद को खुद से मिला देता है। गम दर्द और तन्हाई आने वाली खुशियों का गुलदस्ता हो सकता है, आने वाले पल पर भरोसा रखिए कुछ भी स्थायी नहीं होता। क्या ये खूबसूरत बात हमारे साथियों ने लिखी। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि इन दिनों मेरा इन्हीं से पाला पड़ा है, दर्द गम और तन्हाई कह रहे हैं। तो हमारे आज का ये कार्यक्रम सांत्वना का एक रूप होगा, अब इंतजार है दिन के एक बजने की। तो भाई हम इन्हें बिल्कुल सांत्वना तो देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जैसा कि हमारे साथी ने लिखा कि कोई भी वक्त ठहरता नहीं, बीत ही जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कहने के, संसार के रचयिता ने हर इंसान के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसके जीवन में सुख और दुख आते ही हैं, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सुपरस्टार हो या क्लब बॉय, हर इंसान को सिर्फ सुख ही सुख मिले तो कौन परमात्मा को याद करेगा। इसलिए दुख के समय सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर को ही याद करना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। ये बात भी इन्होंने अपने साथ में लिखी है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जीवन में दुख और दर्द तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें दुख दर्द तन्हाई और गम की परवाह न करते हुए उस पल को आनंदमय बनाकर जीना चाहिए, क्योंकि जैसे कड़ी धूप के बाद सुकून देने वाली छांव आती है, ऐसे ही हर दुख और दर्द हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए हमें सुकून भरे उस पल का इंतजार करना चाहिए। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमें ये भी बताइए कि किस तरह से आप अपने गम से हाथापाई नहीं कह सकते, अपने गम से किस तरह से आप निजात पाते हैं। क्या पूरे वक्त, कई लोगों की आदत होती है कि वो पूरे वक्त दुख में डूब जाते हैं पूरी तरह, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जब भी बड़े से बड़ा दुख भी आए तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो आप किस में समझते हैं खुद को इन दोनों ही कैटेगरी में से? और हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और किसी ने इसे लिखा।

0: आशा भोसले की आवाज में हम साया फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे लिखा शेवन रिजवी ने, ओपी नैयर का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने हमें दिया। हमारे एक साथी कहने के दुख दर्द में विविध भारती हमारा साथी रहता है, और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि गम भी मिला, दर्द भी मिला, तन्हाई भी मिली, जिंदगी की राह में हर रंग की परछाएं भी मिली, हमने मुस्कुरा कर हर जख्म को सीने से लगा लिया, तभी तो इस सफर में हमें खुद से मुलाकात भी मिली। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गमों की बातें अगर हो रही है तो कह रहे हैं कि खुशी और दुख हमारी जिंदगी रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक आता है दूसरा चला जाता है, लेकिन दुख आने पर लोग निराश हो जाते हैं। मेरा मानना है कि दुख इंसान को सबसे अच्छा साथी होता है, दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है और अपने पराये की पहचान भी करवाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा वक्त की दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी के समय पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं और दुख के वक्त पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा ये दिन भी गुजर जाएंगे, मतलब जीवन में कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती, रात के बाद सुबह आती ही है। दर्द, दुख और तन्हाई भी हमारे लिए एक नई ऊर्जा, उम्मीद और आशा लेकर आती है। खुशी तलाशने पर जिंदगी यकीनन खूबसूरत हो जाती है। वहीं हमारे साथी कहने की जिंदगी में हर पल को खुशी से जी लेना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं पर कुछ यादें आखिर तक साथ निभाती है, और एक ऐसी ही याद बनने वाली है कल विविध भारती के सालगिरह के जश्न पर। तो सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास।

जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

विविध भारती के इस जश्न में तो आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के जरिए, क्योंकि कल फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को हम शामिल करेंगे इस जश्न में, और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने

विविध भारती के इस जश्न में तो आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के जरिए, क्योंकि कल फेसबुक लाइव के जरिए हमारे सभी श्रोताओं को हम शामिल करेंगे इस जश्न में, और साथ ही आप पूछ सकते हैं अपने सवाल लाइव भी, जिन्हें शामिल किया जाएगा कार्यक्रम में, जैसा कि हम रोजाना सुरीला सफर कार्यक्रम में ही करते हैं। लेकिन कल मौका खास है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये मौका आपको मिलता रहेगा, और हमारे साथ कई सितारे होंगे जैसे कि ईला अरुण और तिग्मांशु धूलिया और साथ ही अनु मलिक भी। तो इनसे भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल, क्या पता आपके सवाल शामिल हो जाए और उनका जवाब दें आपके ये चहेते सितारे। फिलहाल विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम जारी है, और हमारे एक साथी ने लिखा कि आज 2 अक्टूबर केवल तारीख नहीं बल्कि भारत के दो महान सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को याद करने का दिन है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जो दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देता है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी और अहिंसा का मार्ग हमारे जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा बन देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और इन महापुरुषों की जो सीख है उन्हें अगर हम अपने जीवन में ले आए तो सुख और दुख हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाते हैं और हम एक संयमित जीवन जीना सीख जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब दिल को सतावे गम, तब छेड़ सखी सरगम, सात सुरों में बड़ा ही दम है, बहते आंसू जाए थम, छेड़ कोई सरगम। ये गाना सुनने पर जब आप बहुत तकलीफ में है तो सचमुच गाना दिल को बेहद सुकून देता है। सुर की मधुरता उनके शब्द आपको जख्मों पर मरहम के समान लगते हैं और आप उसमें खो जाते हैं। सारी नकारात्मकता आपकी आंसुओं के साथ बह निकलती है और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो भाई ऐसा ही एक सकारात्मक गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि इस फिल्म का ये गीत है, किसने लिखा, आवाज़ तो आप पहचान ही लेंगे।

0: समझौता फिल्म का ये गीत इंदिवर के बोल, कल्याण चौहान जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की। हमारे एक साथी कह रहे हैं, जब कोई वादा करके मुकर जाता है तो मुझे दुख होता है, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, स्पष्ट रूप से इनकार क्यों नहीं कर देते। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां उनकी भी ऐसी होती हैं कि वो एक वादा तो करते हैं लेकिन बाद में उसे निभा नहीं पाते, तो वो बातें, वैसे आपका कहना तो ये सही है कि अगर वो बातें करते हैं तो उन्हें सीधे सीधे आपको बता देना चाहिए कि भाई ये कुछ परिस्थितियों की वजह से हम उसे नहीं निभा पा रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं, केवल धैर्य से काम लेते हैं, दुख सुख हर परिस्थिति में, सुख में अति उत्साह नहीं दिखाते, पता है कुछ समय बाद दुख तो आएगा ही, लेकिन ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, जो भी अगर उस वक्त हमारे साथ सुख है तो उसका भी आनंद लेना चाहिए, और अगर दुख है तो धैर्य और संयम से ये सोचते हुए कि ये दिन बीत जाएंगे और हम आगे जरूर आगे बढ़ते जाएंगे, खुद को हौसला देकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सुख में हम ज़्यादा सुखी ना हो कि भाई ये दिन बीत जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो एक डर ही हुआ कि हम अपने सुख को ठीक से नहीं जी रहे, उसका आनंद नहीं ले रहे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे रात की तन्हाइयों में आवाज़ देकर मेरी नींद खराब अगर कोई कर देता है तो फिर सोने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे नींद आती है, दुख से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह के मजाहिया कमेंट भी हमारे साथी कर रहे हैं, और शायद इसी तरह वो अपने जीवन में एक हंसी मजाक का हल्का फुल्का माहौल बनाए रखते हैं, और फिर ऐसे वक्त में तो दुख बिल्कुल भी आसपास नहीं पटकता, क्योंकि लोगों के लिए भी वो एक चहेते मित्र बन जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी इन बातों से लोगों का जो मन है वो हल्का रखते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख जीवन की पहचान होता है, और हमारे एक और साथी हैं वो कहने के गम दर्द और तन्हाई, इन सबको साधना बड़ा कठिन काम है, वर्तमान में रहते हैं तो बीते समय का हम पछतावा ही करते रह जाते हैं, आज के समय को गंवाते हुए भविष्य की चिंता में हम डूबे रहते हैं और सोचते हैं हम समय के साथ चल रहे हैं, मगर दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं, बस जिस क्षण हम समय की टंकार पहचान लेते हैं तब सब ठीक हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी में खुशी है तो गम भी है, खुशी स्थायी नहीं होती और ना ही गम, इसलिए खुशी को दिल से अपनाने की जरूरत है, डर से मन अशांत होने लगता है, दुख दर्द तन्हाई बिछड़ना ये जीवन का हिस्सा है और इसे भी धैर्य से समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि जीवन में इतने दर्द मिले हैं कि उनको याद करके सिर्फ आंसू निकल आते हैं, बट इन दर्द से, इन गमों से जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो उस हौसले को याद किया कीजिए तो आपके चेहरे पर ज़रूर एक मुस्कान आएगी, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक और साथी कहते हैं, जिंदगी में गम दर्द और तन्हाई से भागने के बजाय इन्हें स्वीकार करना ही जीवन जीने की कला है, और आगे वो कहते हैं कि जैसा कि मशहूर पंक्तियों में कहा गया, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है, ये तीनों रात के उस अंधेरे की तरह हैं जहां जिसके बाद आने वाली सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, यदि आप इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो इसे एक पड़ाव माने, मंजिल नहीं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी, और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन पहले सुनाते हैं कल के कार्यक्रम के लिए जुड़ा एक संदेश और उसके बाद कार्यक्रम में गीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक, और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, और बात गमों की, दुखों की और साथ में इनसे निपटने की जो तैयारी होती है वो कैसी होती है उस पर हो रही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया में दुख होता है जब मैं किसी के कई पोस्ट को लाइक और कमेंट करता, अगर वो मेरे पोस्ट पर कमेंट तो दूर लाइक करना भी गवारा नहीं समझते और टेक्स्ट कमेंट को टेक्स्ट में जवाब न देकर सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं। तो और साथ ही ये कहते हैं कि दुखों को कम करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम सोशल मीडिया है, व्यस्त रहें दुख टकरा टकरा कर भाग जाएगा। भाई यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी के पोस्ट को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और वो आपकी पोस्ट को कमेंट या लाइक नहीं करते हैं, तो यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि आपने लाइक और कमेंट तो अपनी मर्जी से की है, किसी ये लेन देन तो नहीं है। अगर आपको किसी की पोस्ट या कमेंट अच्छी लगती है और आप उसे लाइक करते हैं तो वो आपका काम है, आपने उस काम को खत्म कर दिया, तो कर्म आपने कर लिया। लेकिन उसके लिए किसी फल की चिंता ना करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें वो कमेंट आपकी जो है या पोस्ट जो आपकी है वो लाइक करने लायक ना लग रही हो, या उन्हें लग रहा हो कि मैं बाद में लाइक करूंगा, व्यस्त हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपना दिल जलाना है तो भाई ये तो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि फिर सोशल मीडिया आपके लिए दुख का बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन आप अपना कर्म करते जाइए, आपको जो अच्छा लगता है उसे लाइक कीजिए, कुछ कहने का मन करता है तो कमेंट कीजिए, और बड़ी ही आसानी से आप इस चीज से उबर जाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने में आपका मन भी लग जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के दो पहलू हैं, एक गम एक खुशी, ये दोनों समय में विविध भारती हर पल साथ रहती है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। अकेलेपन का सबसे बड़ा साथी है, जीवन में कुछ भी नहीं ठहरता, जो आया है सो जाएगा, गम हो या खुशी कुछ नहीं रुकता, आने वाला पल जाने वाला है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं आगे की बात कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग बिना जाने बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं हर समय बुरा ही बोलते हैं, बुरा तो सुनकर बहुत बुरा लगता है पर अब केवल चुप रहते, ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। भाई चुप रहना ही यहाँ सही है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई हर कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता, जिस बात से हम भी सहमत हैं। हम महापुरुषों के बारे में जब पढ़ते हैं जानते हैं तो हम उनके जैसी ही या उन्हीं की तरह हम पूरी तरह से नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जीवन और व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। लेकिन उनकी जो सीख है उसे लेकर हम अपने जीवन और व्यक्तित्व को कुछ बदल सकते हैं, अच्छा और सकारात्मक कर सकते हैं, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और फिलहाल हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम में एक गीत आपको सुनवा दें। बताइए किस फिल्म का गीत है, लिखा किसने है।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहने की आमतौर पर हम खुद का घर तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्टेशन, एसटी स्टैंड, बस, रेल, रास्ते, सार्वजनिक स्वच्छता घरों को हम लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। इस बात का अफसोस होता है और दुख होता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख और बादल एक जैसे होते हैं, जब तक बरसते नहीं तब तक हल्के नहीं होते। जीवन के दायरे में अनेक बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है जब गम, दर्द और तन्हाई का एक साथ सामना होता है। कुछ पीड़ाएं इतनी वेदना देती हैं कि अश्रु की धार भी अपने साथ नहीं बहा पाती, बस हृदय के किसी कोने में चुपचाप ठहर जाती हैं। जीवन ऐसा ही सारा खेल मानव मन की कल्पना का है। वहीं हमारे साथी कहने कि जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल होता है तो वो अपने में क्रोध से युक्त स्वयं को पाता है, जो दुख का मूल कारण होता है। यदि ऐसे ही माहौल में ये गीत मस्तिष्क में आ जाए फिर कहने ही क्या कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जब गलती नहीं होती और कोई इल्जाम लगाए तो दुख होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बात जीने की चली है तो मेरी जिंदगी के 44वें साल तो खुशियों में बीते, तब हमें गमों का आभास भी नहीं था, इसलिए इसकी जरा भी परवाह नहीं की। ये वक्त भी बदल जाएगा। अब जब वक्त एकदम पलट गया तो गमों की परवाह हो रही है। यही परवाह उस समय किए होते तो ये गम इतना तकलीफ ना देते। अब तो फिर एक इंतजार लिए जा रहे हैं कि वक्त फिर बदलेगा। अब कब बदलेगा यही पता नहीं। तो जरूर बदलेगा वक्त आपका भी, हम ये कहते हैं, क्योंकि वक्त की तो ये आदत ही होती है, बदलता ही है और बीतता ही है। कभी भी दुख के जो वक्त है वो पूरी तरह उसी तरह नहीं रहता, बस ज़रूरत है कि हम उससे बाहर निकलें। तो आप हमें ये बताइए कि अगर कभी आपको दुख हुआ तो आप क्या करते हैं? गम और दुख भरे गीत सुनकर और दुख में डूब जाते हैं या सकारात्मक गीत सुन के अपने मन को बदलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या दुख में बैठे रहते हैं, दुख को आत्मसात कर लेते हैं, या सुख की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, मन को बदलने की कोशिश करते हैं? ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको एक ऐसा ही गीत सुनवाते हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाए। फिल्म का नाम बताइएगा।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत को फिल्म गीत के लिए फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम बातें कर रहे हैं कि अगर हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, किस तरह से उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि व्यक्ति को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि दुख आए उसके बाद सुख आए, दुखी वाले दिनों को नहीं बोलना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। जब दुख होता है तो अपने एक पुराने मित्र को याद कर लेती हूँ, उसकी अच्छाई को याद करके मन को शांति मिलती है, ऐसा हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी हैं कह रहे हैं, जब किसी दुख या दर्द से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उसे किसी के साथ साझा करने के बजाय एक काम करता हूँ। गांव से थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत सा तालाब है, वहाँ तालाब के किनारे बैठता हूँ, फिर अकेले जी भर कर रोता हूँ। उसके बाद हमारे गांव में बेसहारा राह भटके हुए बच्चों के लिए एक रिमांड होम बना है, उन बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाता हूँ, उन बच्चों को मेरा गाया गीत सुनना अच्छा लगता है, उन्हें गाने सुनाता हूँ, किशोर दा के गाने, और ये सब चक्कर में मेरा दुख दर्द मुझसे किनारा कर लेते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ईश्वर करे विविध भारती श्रोता परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां रहें, दुख भरे दिन कभी ना आए, ऐसी कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दुख और सुख बने ही रहते हैं जीवन में, ऐसा भी हम कहना चाहते हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप सभी के साथ से हमारे जो भी दुख हैं दर्द हैं वो सब हम से दूर हो जाते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे कि श्रोतागण आज के गीत बहुत ही अच्छे, मैं बहुत बार दुखी होती हूँ तो दर्द भरे गीत सुनती हूँ, अगर कुछ खुशी हो तो खुशी वाले गीत सुनती हूँ, बचपन से ही विविध भारती सुनने आई हूँ। वहीं हमारे साथी कह रहे कि कुछ पल के लिए दुखी होता हूँ फिर सोचता हूँ कि मेरे दुख से होने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या दुनिया बदल जाएगी। भाई इस सोच की बजाय आप ये सोच सकते हैं कि ज्यादा देर दुखी रहने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मैं इससे बदल सकता हूँ दुखी रहकर, तो बिल्कुल भी नहीं, फिर आपको एक हौसला मिलेगा कि आपको आगे बढ़ना है और खुद के इस दुख को दूर करना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं दुख से संबंधित बात कहते हुए कि कई दुख मैंने झेले हैं, अब तक जीवन में उन

0: दुखों को मैं सहन भी कर लेता हूँ, परंतु जब मैं किसी अपने को या रिश्तेदार को या मिलने वाले को इस संसार से परलोक के लिए बिछड़ते देखता हूँ तो ये दुख मेरे लिए असहनीय हो जाता है। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता, फिर भी परमपिता परमेश्वर की ही इच्छा मानकर दुख सहते हुए अपने आप को शांत करना ही पड़ता है। वहीं हमारे एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट किया है जिन्हें हम हिंदी में सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुख दर्द ये सब जो भी हैं वो अनुभव हैं, एक ऐसे अनुभव हैं जो हमारे खुशी और आनंद के पलों को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं और ज़्यादा मीठा बना देते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। और आगे उन्होंने लिखा, जीवन चक्र में कोई चीज़ शाश्वत नहीं है। बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो। मैं आज राजकोट आया हूँ, पल दो पल समय मिला तो लिख लिया, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खुश इंसान कहीं नहीं रह सकता, अगर वो दिन भर खुश रहने के नए नए तरीके खोज ले तो खुश रह सकता है, जैसा कि विविध भारती पर गीत सुनकर और ऐसी कई चीज़ों में आप खुश रहने का तरीका खोज सकते हैं। तो भाई देखिए, पहले आपने ही कहा कि खुश रहने के चाहे तो कहीं खुश नहीं रह सकता, फिर आपने ही तरीका बताया कि किस तरह से खुश रह सकते हैं। तो भाई खोजा जाए तो सारी चीजें संभव है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द की आग में जलना ही होता है, जलना ही नहीं होता है, गम से आगे भी कोई रास्ता होता है। आंख छलके तो इस बहाने इसे बहने दो, मत रोको, बोझ सीने को का रोने से ही कम होता है। वक्त मरहम है हर एक जख्म का, ये याद रखो, शब जितनी भी हो काली सवेरा होता है। अपने खुद को संभालो, जरा ठहरो, देखो हर अंधेरे के पीछे एक चिराग होता है। भाई क्या बेहतरीन बात आपने लिखी, और वाकई ऐसा होता है कि जब भी वक्त में कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत गम है तो वो दूर हो ही जाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि जिंदगी में गम आए हैं, खुशियां भी, मैंने बस इतना सीखा कि दुख को दिल पर बोझ बनाकर नहीं एक अनुभव बनाकर जीना चाहिए, और जब खुशी मिले तो उसे कल की चिंता में नहीं आज की मुस्कान में जी लेना चाहिए। हर दर्द हमें कुछ सिखा कर जाता है और हर खुशी एक खूबसूरत याद दे जाती है, इसलिए अब गम से शिकायत नहीं और खुशियों से कोई डर नहीं, जो पल मिला है उसे पूरे दिल से जी लेना चाहिए, शायद यही जिंदगी है। गम आए तो थोड़ा रो भी लें, खुशी आए तो खुलकर हंस भी लें, आखिर दोनों ही जिंदगी के रंग है। मेरा मानना है कि हर पल को स्वीकार करके मुस्कुराते रहना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। भाई क्या ये खूबसूरत बातें आप लिखकर भेज रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाए। वैसे आप में से बहुत से लोगों के लिस्ट में ये गीत शामिल है, बताइएगा किसने लिखा है।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर

0: दोस्ती फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख का रोना रोकर लोगों की हमदर्दी हासिल करना कतई सही नहीं होता। ऐसे लोगों से समाज ऊब जाता है। जो लोग मेहनत से दुखों को जीत लेते हैं उन्हें समाज से मान सम्मान मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा कोई दुख कभी नहीं हुआ जिसे मैं कुछ बयां करूं। छोटे मोटे दुख तो आते जाते ही रहते हैं। भाई क्या कहने आपके, ऐसा विचार मन में जब रहता है तो सारे दुखों से हम पार हो जाते हैं। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दुख दर्द से कौन नहीं वाकिफ है, सिक्के के दो पहलू की तरह गम और खुशी भी आते जाते रहते हैं। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं उससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है, हंसते हंसते जीना चाहिए। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का संगम है, एक जाता है दूसरा आता है। मैंने कोशिश यही रहती है कि जीवन में संतुलन बनाकर जिया जाए, सही यही सीख मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में अगर संतुलन कोई बना लेता है तो उसके बाद दुख और सुख हो, चाहे कोई भी कैसा भी एक माहौल हो, कैसा भी भाव हो, हम संतुलित ढंग से रहते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। वैसे हमने अपने साथियों के जो लिस्ट है उसमें एक गीत देखा था जिसका जिक्र तो अभी कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम तो देख चुके हैं वो लिस्ट में गीत, और हमारी लिस्ट में भी शुरुआत से वो गीत शामिल था। तो क्यों ना वो गीत आपको सुनवाए, क्योंकि एक जश्न भरा गीत है वो। तो चलिए बताइएगा कि इस गीत में संगीत किसका है।
1: दर्द दिल

कर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत से सजा था। हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्हें दुख होता है जब वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है और वो कार्यक्रम सुन रही हैं, तो इसका मतलब कि वो इस कार्यक्रम में तो शामिल ही है। तो किसी न किसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल रहते हैं। जिस तरह से शामिल कर रहे हैं हम कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, और आपको बताना है कि फिल्मी पर्दे पर किस पर फिल्माया जाता है, फिल्माया हुआ दिखाया गया है ये गीत।

तो ये पल भी जाने वाला है। गोलमाल फिल्म के इस गीत में नायक अमोल पालेकर नजर आते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कल विविध भारती के जश्न में आप सभी से मुलाकात होगी। फेसबुक पेज पर लाइव बने रहिएगा हमारे साथ। सुरीला सफर कार्यक्रम आज का बस यही समाप्त करते हैं।

0: 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं है जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
2: मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़

0: आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिये के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और

0: सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है, युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल

0: किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
1: मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
0: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाउजी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे कमर जलालाबादी के बोल। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया ओपी नैयर ने।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

मुकेश की आवाज में आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज, बोल शैलेंद्र के। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में माया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द, सलील चौधरी का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे रंगोली फिल्म के इस गीत में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: छोटे नवाब फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, राहुल देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरा जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हमराही फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। सखियों, बड़ी शिद्दत से जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं तो कई बार हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन कभी कभार हम थोड़े निराश भी हो जाते हैं। लेकिन

0: हमारी हर कोशिश हमें सबक जरूर देती है कि हमें हारना नहीं है बल्कि इन कोशिशों को जारी रखना है, कामयाबी तो तभी मिलेगी। तो आज भी हमारी सखियाँ अपने दिल की बात हमसे कहना चाहती हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए। देखते हैं सबसे पहले किस सखी का कॉल हमारे कार्यक्रम में जुड़ गया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे जुड़ी हैं इस समय फोन कॉल पर।
1: मोहिनी बैगा बात कर रही हूँ।
0: मोहिनी जी कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं तो प्रदेश शहडोल से लगाई हूँ।
0: शहडोल से
1: जी, बहुत सालों के बाद कॉल लगा है मैम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती से बात हो रही है।
0: जी बहुत सी सखियाँ हैं जो इस समय कोशिश करती रहती हैं कि उनका कॉल लग जाए, लेकिन इतनी सारी सखियाँ क्योंकि एक साथ में कोशिश कर रही होती हैं तो लाइनें व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन हमें भी इस बात की खुशी है कि आज आपका कॉल कनेक्ट हुआ है। बताइए अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं हमें?
1: कि नहीं मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के काम करती हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारा देखने के लिए चीज है।
0: आपके घर में और कौन कौन है?
1: मम्मी पापा है, भाई बहन है।
0: बताइए विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत और उजाले उनकी यादों की और आज के मेहमान।
0: जी
1: बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मैं पसंद करती हूँ।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनना है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
0: तो मोहिनी जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है मुस्कान फिल्म से। आनंद लीजिए इस गीत का।
2: जिस

0: और क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम निर्मला गिरी है, हम मयूरभंज उड़ीसा बारीपदा से बोल रहे हैं।
0: अपने बारे में कुछ बताइए निर्मला जी, आप क्या करती हैं?
1: हम तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई का मशीन है, सिलाई कर लेते हैं। पति है जो लाइन का कंट्रैक्टरी करते हैं
0: जी।
1: और एक बच्ची है, 8th क्लास में, CBSE में पढ़ती है, 8th क्लास
0: जी।
1: लेकिन हमारा एक दोस्त है राउरकेला शक्ति नगर में
0: जी,
1: तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर वंबर कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हर वक्त उसको याद करते हैं। वो रेडियो सुनना वो सहेली ने मुझे सिखाया, तब उसका घर हम जाते थे
0: जी।
1: माना कि हमसे वो सीनियर था
0: हुँ.
1: लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बहुत दोस्ती थी। वो हमको रेडियो सुनना सिखाया, हेलो सहेली सब कुछ सिखाया। उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है। हमारा एक ही सपना था जो वो भी रेडियो सुनती है, उसके पास वो मेरा याद पहुंचाना था, तो उसको हम बहुत याद करते हैं। लेकिन उसके नाम से गीत सिर्फ तुमका एक मुलाकात जरूरी है, सुनो उसको सुनाना।
0: निर्मला जी आप बहुत भावुक हो रही हैं अपनी दोस्त को याद करके, और उन्होंने ही आपको रेडियो सुनना सिखाया, आपको बताया सुनने हैं कौन कौन से कार्यक्रम, तो वो भी ज़रूर आपका कार्यक्रम सुन रही होंगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपकी आवाज़ वो सुनेंगी तो वो आपको ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करेंगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आपकी दोस्त जिसे आप बहुत याद करती हैं, तहे दिल से याद कर रही हैं, वो आपको मिल जाए। और आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं ये भी आपने समर्पित किया है अपनी उसी दोस्त के नाम।
1: हाँ जी।
0: आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत जो आपने समर्पित किया है अपनी दोस्त को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: ग्राम कल्याणी घर से कामिनी पटेल।
0: कामिनी पटेल बात कर रही हैं
1: जी मैम।
0: अपने बारे में कुछ बताइए।
1: सिलाई मशीन करती हूँ, सखी सहेली कार्यक्रम सुनती है
0: जी। आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं कामिनी जी?
1: मैम जी, ऊर्जा काले कावा।
0: गदर फिल्म का गाना आपको सुनना है, ऊर्जा काले कावा
1: जी।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर सखियों का मनपसंद कार्यक्रम हेलो सहेली, और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ जुड़ी हैं हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया है ये भी बताइए।
1: जी मेरा नाम रूही है, मैंने पंजाब से फोन किया है।
0: पंजाब के कौन से शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी मैं मोहाली में रहती हूँ।
0: मोहाली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है?
1: जी बहुत अच्छा शहर है पंजाब का है
0: जी,
1: चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर हैं वहाँ पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है, और अब मौसम में जब बदलाव आने की

0: शुरुआत हो रही है, तो बताएं
1: जी
0: क्या ठंड
1: हाँ,
0: पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी ये जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है, ये बड़ा
1: जी
0: खुशगवार मौसम हो रहा है वहाँ का।
1: जी मैम, हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है।
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने
1: हाँ,
0: हमसे,
1: मौका मिल गया और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
0: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां
1: जी
0: बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं, और क्योंकि लाइनें व्यस्त होती हैं तो उनका फोन

0: मौका मिल गया और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
1: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं और क्योंकि लाइनें व्यस्त होती हैं तो उनका फोन नहीं लग पाता, तो आपको इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही आपका कॉल लग गया है।
0: हाँ जी, शुक्रिया जी। मैं तो बहुत फैन हूँ जी विविध भारती की, बचपन से ही जी, जब हम पढ़ते थे और आज हम पढ़ाने लग गए हैं तब से ही।
1: तो पढ़ते समय भी और आज पढ़ाते समय भी रेडियो का साथ बना हुआ है
0: जी। प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे तब तक मेरे मम्मी जागते थे और ये हवा महल छाया गीत तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे उस टाइम भी।
1: और आज कौन से कार्यक्रम है जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
0: जी तो यही रोज सुरीला सफर, चलो सुन नहीं पाती स्कूल के टाइम में, बट सखी सहेली घर पहुंचते ही सुन लेती हूँ।
1: तो जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन आप सुरीला सफर भी सुन लेती होंगी?
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, और यहाँ भी जाकर रेस्ट हो फिर तो सुन ही लेते हैं, आधा प्रोग्राम तो सुन ही लेते हैं।
1: तो जब स्कूल में आप होती हैं तो मोबाइल पर सुनती हैं?
0: जी जी बिल्कुल, अभी भी मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
1: आप कितने समय से स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही हैं?
0: हो गए 10 साल तो हो ही गए।
1: तो पढ़ाना कैसा लगता है आपको?
0: जी मुश्किल ही है इंटरेस्टिंग भी है मुश्किल ही है।
1: बिल्कुल, और अपने इंटरेस्ट का अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना भी मुश्किल हो उसमें मजा जरूर आता है।
0: जी मजा जरूर आता है, बच्चों में जी लग जाता है।
1: और बच्चे भी कई बार अपनी बातों से हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं।
0: जी मम्मी आपके बहुत फैन है, बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं की बदौलत ही हम ये विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए हैं
1: जी और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य।
0: जी
1: छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो रूही जी बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
0: जी आप लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
1: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का झुमका।

0: खुशी हमें भी है। तो बताइए सुलोचना जी, आप क्या करती हैं?
1: दीदी घर पे रहते हैं, दीदी घर का काम करते हैं, दीदी मम्मी पापा हैं हमारे। तो वो दीदी खेती किसानी करते हैं, हम तो दीदी घर में काम करते हैं, जितना भी बनता है अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं। दीदी पढ़ाई तो हमने नहीं कर पाई दीदी ज्यादा। दीदी दसवीं तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद क्या हुआ दीदी, हमारे साथ एक मतलब यहाँ पंडापुरा में पढ़ती थी दीदी, हम सागर में
0: जी।
1: तो दीदी हमारी एक साल जो तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल।
0: तो इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं।
1: जी दीदी करेंगे दीदी, अगर बनेगा प्रयास तो करेंगे दीदी हम
0: जी। और आपके क्या क्या शौक है सुलोचना?
1: दीदी जी हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी, बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे, जब आपके यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी एक, वो सुनती थी बहुत, SMS की बहाने भी थी, इसके तरह 12 बजे आता था वो।
0: हाँ
1: तो दीदी वो सुनते थे, वो दीदी सखी सहेली तो हमारी, हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सखियां मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी।
0: अच्छा, तो सुलोचना जी आपको गानों के कार्यक्रम ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के प्रोग्राम सुनती हैं?
1: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है, गाना तो लगती है दीदी, जैसे हेलो सहेली है और सखी सहेली में जो आप लोग दो दीदी आती है, अच्छी अच्छी बातें बताती है पकवान के बारे में कि कैसे बना कुछ भी, मतलब ये जानकारी देती है आप लोग।
0: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाती भी हैं उन पकवानों में से?
1: दीदी बनाते भी है दीदी, हम बना लेते हैं
0: जी। अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: दीदी मूवी का नाम है वीरजारा
0: जी
1: और गाने के बोल है ऐसा देश है मेरा
0: जी। आपको सुनवाते हैं वीरजारा फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: दीदी। जिला सागर एमपी मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से सुलोचना कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: सुलोचना जी,
1: जी दीदी, पहली बार फोन लगा तो दीदी बहुत खुशी हो रही है। दीदी हमारे यहाँ से बहुत सी सखियाँ कॉल करती हैं दीदी।
0: जितनी
1: क्या
0: खुशी
1: दीदी?
0: आपको है उतनी

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए आप कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे।
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैम कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ पूनम जी, आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज आपसे बहुत समय बाद, और यूँ कहेंगे कि बहुत अरसे बाद बात हो रही है, पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में।
0: तो इस कार्यक्रम में आज पहली बार आप बात कर रही हैं, बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा है। इस बात की जितनी खुशी आपको होती
1: जी
0: है हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी
0: पूनम।
1: मैम, जी मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम, मैंने आपको सुना है
0: जी
1: विविध आर्टिमिक, और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं और मेरा जॉब भी रहता है, और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ, गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी?
1: मैम आज गीत सुनाइएगा, तेरे चाहत के सिवा और कोई मेरी चाहत नहीं, ये गाना अनुराधा पौडवाल जी के बाद में सुनना है। और मैम हेलो सहेली कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और जय माला, और विविध भारती के सभी कार्यक्रम से मैं जुड़ी रहती हूँ, और मैं जरूर से सुनती हूँ क्योंकि मुझे विविध भारती सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पूनम जी, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बड़ी चहक है आपकी आवाज में, आप खुश हैं फोन लग गया तो आपका?
1: हाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज चंचल जी से मेरी बात हो रही है, मेरी खुशकिस्मती है और शुक्रिया उस रॉक का भी जिसने मुझे आज मौका दिया आपसे बात करने का। मैं बहुत ज्यादा इससे अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ। मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम है खालिदा। तो आज बहुत सालों से ट्राई कर रही थी इस प्रोग्राम में, तो शुक्रिया रॉक का भी।
0: तो खालिदा जी आपका ये पहली बार कॉल लगा है आज?
1: जी पहली बार इस प्रोग्राम में कॉल लगा है।
0: और कश्मीर जहाँ से आपने कॉल किया है ये वो शहर है जिसे जन्नत भी कहते हैं?
1: हाँ जन्नत भी कहते हैं और जन्नत है भी क्योंकि जो भी कश्मीर आता है चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो जब भी कश्मीर को ही पहुंचता है यहाँ से जाने का फिर दिल और मन भी नहीं करता है।
0: और ये वो जगह है जहाँ हर समय पर्यटक आते जाते रहते हैं तो बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर?
1: हाँ बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है और साथ साथ अगर सखी सहेली का संग हो और विविध

0: आरती का सॉन्ग हो तो फिर तो क्या ही बात है।
1: क्या बात है खालिदा जी, हमें भी ऐसे श्रोताओं का साथ बहुत अच्छा लगता है जो बड़ी शिद्दत से सभी प्रोग्रामों को सुनते भी हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो आप बताइए आपके पसंद के कौन कौन से कार्यक्रम हैं?
0: विविध भारती पे जो आता है, आपकी फरमाइश आता है, या जयमाला आता है, सितारा आता है, या सुबह फोन इन प्रोग्राम कुछ भी आए ना इसमें तो हम सब सुनते हैं। और जो भी ईमेल जैसे कभी कभी इसके प्रोग्राम आता है तो वो भी सब सुनते हैं। जयमाला सुनती हूँ, रोज में सुनती हूँ, और जो सखी सहेली है वे इसका भी इंतजार करती हूँ, और पिटारा में जो आपकी फरमाइश आता है वो भी सुनती हूँ।
1: अच्छा, ये तो हुई रेडियो सुनने की बात है, रेडियो सुनने के अलावा आप क्या करती हैं, आपका शौक क्या है?
0: जी मैं टेलरिंग के साथ करती हूँ, और यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा कढ़ाई होती है, जो पश्मीने के शाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो यहाँ पे वही ज्यादा काम होता है।
1: और वो कढ़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, और उसके चाहे शॉल हों, चाहे हम सलवार सूट पहने, दुपट्टे पहने, सभी चीज़ें बहुत नायाब लगती हैं, तो वो कढ़ाई का काम करती हैं आप?
0: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ और टेलरिंग के साथ भी थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कढ़ाई भी होती है, तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं अगर पढ़े भी लेकिन कढ़ाई साथ साथ उनका शौक भी होता है और कमाई के लिए वो भी ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल, और इसीलिए इस काम की मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो कश्मीरी कढ़ाई के कपड़े ख़रीदना पसंद करते हैं, तो इसीलिए बाज़ारों में भी उसकी मांग बहुत ज़्यादा रहती है। आपकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत हैं। और बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमें सुनना है मेरी जंग, इस मूवी का वो सॉन्ग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: अभिलाषा यादव है मेरा नाम।
0: अभिलाषा जी, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जयपुर से बात कर रही हूँ आपसे।
0: अपने शहर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: तो मेरा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर राजस्थान से है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में।
0: नर्सिंग ऑफिसर आप हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, तो
1: जी
0: किस तरह का काम रहता है, अपने काम के बारे में बताइए हमें।
1: ऑल टाइम हमें 24 आवर्स की सर्विसेज होती हैं कि जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जाना भी पड़ता है। पर अभी मैं 24/7 में केवल एक टाइम की ही ड्यूटी करती हूँ क्योंकि मेरी डिस्पेंसरी ड्यूटीज हैं अभी फिलहाल।
0: तो इसमें आपकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही समय आपका नियत समय है, उसमें ही आप काम कर रही हैं। फिर आप रेडियो सुनने के लिए भी समय निकाल पाती हैं?
1: बिल्कुल, मैं दोपहर में शाम को मेरा मन होता है उस अकॉर्डिंग में अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ कि भाई कब मुझे क्या सुनना है, तो मैं सेट कर लेती हूँ उस अकॉर्डिंग अपना टाइम।
0: और नर्सिंग फील्ड से आप कब से जुड़ी हैं?
1: करीब 2007 से,
0: यानी कि करीब करीब 20 साल होने आए हैं आपको इस काम में।
1: हाँ जी हाँ।
0: तो अच्छा खासा अनुभव है आपका, और जॉब ने आपको बहुत कुछ सीख भी दी होगी।
1: बिल्कुल, हमारा वर्क ही ऐसा है कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार अलग तरीके का पेशेंट होता है, हर बार अलग तरह से केयर करनी होती है
0: जी,
1: तो बहुत सी चीजें, नई चीजें भी सिखा के जाती है हमें, और हमारा जो प्रोफेशन है वो लर्निंग प्रोफेशन ही है
0: जी। ये सेवा भाव का काम है, और अगर आप सेवा भाव से करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जिन परिवारों के मरीजों की आप देखभाल करते हैं वहाँ से आपको दुआएं भी बहुत मिलती
1: हैं। बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें बहुत दुआएं देके जाते हैं जब वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे समझते हैं जैसे डॉक्टर उनके लिए भगवान है, उसकी तरह से हम जब उन्हें अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको यही फीलिंग आती है, वो खूब हमें ब्लेसिंग्स देके जाते हैं।
0: तो बड़ा अच्छा काम है आपका। और बताइए अभिलाषा जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आप हमें ताल मूवी से गाना है, इश्क बिना क्या जीना है, ये सुनवाएं प्लीज।
0: तो ताल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो सहेली
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते। बताइए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कौन सी सखी जुड़ी है।
1: जी मैम, रिंकू देवी बात कर रही हूँ। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील ठाठ गांव कंठी से।
0: तो आपके बहुत खूबसूरत शहर से आपने फोन किया है। अपने शहर के बारे में बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: पहाड़ी एरिया है यहाँ पर, तो मतलब गर्मियों में भी बड़ा अच्छा मौसम रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा इलाका है यहाँ का और यहाँ पर मतलब की गर्मी कम लगती है।
0: गर्मी का तो एहसास होता ही नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में। और
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: जो
1: मैम,
0: मौसम आने वाला है वो तो बर्फबारी का और बहुत कड़ाके की ठंड का मौसम आने वाला है।
1: जी बिल्कुल मैम, अब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी आने लगी है, सुबह शाम थोड़ी सर्दी लगती है इधर।
0: तो रिंकू जी आप क्या करती हैं।
1: जी मैम, मैं घर का ही काम करती हूँ।
0: घर के कामों में भी आपकी पसंद का काम कौन सा होता है।
1: जी मैम, मुझे तो सबसे ज्यादा मतलब कैसे घर में मैं किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: मैम गाना मैंने दोस्ती फिल्म का सुनना है, राई मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और ये सभी को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, मतलब सभी अपनी सहेलियों को बहुत शुभकामना और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं।
0: तो आपकी जो सभी सहेलियां हैं उनको भी हम ये गाना सुनवाते हैं और हमारे सभी सुनने वाले इस गीत को पसंद करेंगे। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं आशा चौहान बोल रही हूँ, गुजरात राजकोट से।
0: गुजरात राजकोट से। तो आस्था जी, अब जो मौसम आने वाला है वो गरबे का मौसम है। आज से बस 9-10 दिन बाद गरबा शुरू हो जाएगा और गुजरात में तो बहुत धूम रहती है। तो
1: बिल्कुल,
0: आपको गरबा करना अच्छा लगता है?
1: नहीं, मुझे देखना अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा से डांस पर्सन नहीं रही हूँ
0: जी,
1: मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ। मैं साहित्य पसंद किया है मैंने हमेशा, और मैंने कविताएं भी लिखती हूँ, और मुझे डांस देखना अच्छा लगता है, कल्चरल प्रोग्राम। और मैं भारत के हर कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे भारत के अंदर ही घूमना पसंद है, सारे स्टेट्स के कल्चरल एक्टिविटीज देखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ के नज़ारे देखना, और बस साहित्य से जुड़ी हुई इसलिए कुदरत को देखना अच्छा लगता है ज्यादा।
0: और ये जो देश प्रेम का भाव है आपके अंदर, ये बहुत सुंदर है। तो आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप लिखती भी हैं, अपनी लिखी कोई कुछ पंक्तियां आपको अगर याद हैं, कोई कविता याद है तो हमारे साथ साझा करना चाहेंगी?
1: हाँ जरूर, मैंने दो कविताएं चुनकर रखी है, जब मैंने सोचा फोन लग जाएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक कविता है हम हिंदुस्तानी, उसका नाम रखा है मैंने
0: जी,
1: और वो कविता इस तरह से है, शहर को गांव बना दो, क्योंकि आजकल शहर बढ़ते जा रहे और बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी कुदरत को लेकर आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और सब, तो उसके ऊपर कविता लिखिए। शहर को गांव बना दो, पेड़ों की बौछार लगा दो, पानी की फुहार बहा दो, शहर को गांव बना दो, खेती की हरियाली बिछा दो, चिड़िया का अंबार लगा दो, मौसम का हाल बता दो, बाइक नहीं साइकिल चला दो, शहर को गांव बना दो। मैं इसके बाद ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद साइकिल चलाती हूँ, 55 इयर्स की उम्र है मेरी।
0: और साइकिल चलाने से एक फायदा तो ये है कि प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है, और आपकी सेहत है वो भी बरकरार रहती है। और जैसा अभी आपने कविता सुनाई कि शहरों को गांव बना दो, तो वाकई अगर ऐसा हो सके तो जो खुशहाली है वो फिर से लौट आएगी, और जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक कम हो सकेगा।
1: बिल्कुल, लेकिन 80% लोग जो नहीं सोच पाते या सोचते नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कमी है और शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, उनको भी सोचने की जरूरत है, तो इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं होगा हम अगर सब समझ जाएंगे।
0: और आप जैसे जागरूक लोग जब तक हैं,

0: तो एक ही इंसान आगे और चार लोगों को जागरूक कर सकता है। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। हम चाहेंगे कि आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएं, तो बताइए आपकी पसंद क्या है।
1: मेरी पसंद का जीवन मृत्यु पिक्चर का कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा, झिलमिल सितारों वाला सुना दीजिएगा। मेरी दूसरी कविता जो मैंने निकाल रखी थी उसकी भी चार पंक्तियां सुना देना चाहती हूँ आपको।
0: जरूर सुनाइए।
1: धरा के हम सफर, उस कविता का नाम है, रखा है मैंने, समंदर को के मोती चुरा कर सीप बना दो। इंसान कुछ भी कर सकता है, सीप में से मोती निकलती है, लेकिन मोती में से भी सीप बना सकते हैं इंसान। ज्वेलर है वो बना सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव करे कुदरत के लिए और इंसानियत के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी, नेगेटिव ना करे। समंदर के मोती चुरा कर सीप बना दूं, कर्म क्षेत्र की राही हूँ मैं दीप बना दूं, उद्वेग मन के मीत बना दूं, हार नहीं जीत बना दूं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर आपने अपनी कविताएं सुनाई हैं। आपकी पंक्तियां, आपकी लेखनी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं, तो बस अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहिए और इसी तरह से रेडियो के माध्यम से इन्हें साझा करती रहिए। और आपको सुनवा रहे हैं जीवन मृत्यु, इस फिल्म का गीत जो आपने सुनना चाहा है।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और हर बार जब ये कार्यक्रम होता है तो कुछ नई सखियां हमारे साथ जुड़ती हैं और कुछ ऐसी सखियां जो हर थोड़े अंतराल पर हमें कॉल करती रहती हैं। तो जिन सखियों का कॉल आज भी नहीं लगा वे निराश ना हो, हो सकता है अगली बार आपका कॉल लग जाए, इसलिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जिन सखियों ने हमसे बात की हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें ताकि नई सखियों को भी कॉल करने का मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन जब हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है उस समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, एक अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर-मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।

वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो। कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी? हैं मम्मी, बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ। मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा, आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे, जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं।

पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एक आध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई। दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहाँ समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है, और पता है रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं, घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है, और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मड़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी।

0: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: What happened, दिव्या?
0: क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना। तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
1: नहीं यार, खुश हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है। मम्मी की बहुत याद आ रही है।
0: खैर छोड़ो। अरे तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना।
1: नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सब के लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सब के लिए।
0: छोड़ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है,

इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहाँ से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूँ उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ, पर तुझे अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोंटाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं माँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? अब बाइक पे तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आज़ादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में

मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नज़ारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह उड़ना

0: फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के ठीक 5 बजे है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को आशा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं हमारी सभी सखियां? उम्मीद करती हूं अपने परिवार के साथ खुश होंगी और स्वस्थ भी, और अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए कर रही होंगी हमारा इंतजार। तो लीजिए सखियों, आपका इंतजार समाप्त हुआ। आज हम फिर हाजिर हैं एक विषय लेकर, जिसमें हम आपको देंगे नई नई जानकारी और सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय है अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह, और आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के बारे में। साथ ही विविधा में हम जानेंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में। सखियों, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, और आज 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन जब हम देश के दो महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। यही दिन दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देने वाला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है, और इसी के साथ समाज से छुआछूत और भेदभाव जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूकता का संदेश देने वाला अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह भी आता है। सखियों, हमारा समाज अलग अलग रंगों से मिलकर बना है, यानी हमारे समाज की खूबसूरती उसकी विविधता में है। अलग अलग भाषा, पहनावा, खान पान और परंपराओं के बावजूद हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां भी रही हैं जिन्होंने एक इंसान से दूसरे इंसान को दूर किया है। इन्हीं में से एक है अस्पृश्यता। अब आप सोच रही होंगी कि यह क्या है? तो अस्पृश्यता यानी किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति या सामाजिक पहचान के आधार पर छूने, साथ बैठने, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने या बराबरी का व्यवहार पाने से रोकना है। इसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इसी उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर तक अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह मनाया जाता है। सखियों, यह सप्ताह हमें याद दिलाता है कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सखियों, महात्मा गांधी जी ने सामाजिक समानता और अस्पृश्यता के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। वे मानते थे कि समाज की प्रगति तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी का अधिकार मिले। 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं, इसलिए यह समय हमें उनके विचारों को याद करने और अपने व्यवहार में उतारने का अवसर देता है। यह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि मानव सम्मान का सवाल है। सखियों, जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम दूसरे बच्चों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, अगर किसी महिला को सिर्फ उसकी जाति के कारण किसी जगह जाने से रोक दिया जाए, अगर किसी परिवार को सार्वजनिक कुएं, मंदिर या अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाए, तो उस व्यक्ति के मन पर क्या गुजरती होगी। ऐसा भेदभाव केवल उस समय दुख नहीं देता बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। सखियों, हमारे संविधान ने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में व्यवहार को कानूनन निषिद्ध करता है, यानी किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत या जाति के आधार पर भेदभाव करना कानून की दृष्टि से गलत है। लेकिन केवल कानून बना देने से समाज नहीं बदलता। कानून जरूरी है लेकिन सोच में बदलाव उससे भी जरूरी है। और हमारी सोच बदलने की शुरुआत कहाँ से होगी? यह शुरुआत होगी हमारे अपने घर से। सखियों, परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है। बच्चा स्कूल जाने से पहले घर में सीखता है लोगों से कैसे बात करनी है, किसका सम्मान करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। लेकिन अगर हम बच्चों को घर में नहीं सिखाएंगे तो वह क्या सीख पाएंगे? इसलिए हम बच्चों को सिखाएं कि हर इंसान बराबर है, किसी के काम को छोटा मत समझो, किसी को उसकी जाति से मत आंकना, हर व्यक्ति के साथ सम्मान से बात करना, तो यही बच्चे आगे चलकर भेदभाव से मुक्त समाज की नींव को मजबूत बनाएंगे। और ये बच्चे हम सबसे कैसे सीखेंगे? तो सखियों, बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। अगर हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर ध्यान दें कि घर में काम करने वाले व्यक्ति से हम किस तरह बात करते हैं, क्या हम उन्हें सम्मान देते हैं, क्या हम उनके काम को महत्व देते हैं। सखियों, सम्मान देने के लिए कोई बहुत बड़े धन या इनाम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अच्छी सोच की जरूरत होती है। सभी व्यक्ति से सम्मान से बात करना, अलग या भेदभाव वाला व्यवहार ना करना, बच्चों को सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। हर व्यक्ति को सम्मान से जीने, शिक्षा पाने, आगे बढ़ने और समाज में अपनी जगह बनाने का अधिकार है। सखियों, अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह केवल एक सप्ताह मनाने का अवसर नहीं है बल्कि यह अपने व्यवहार और सोच को समझने का अवसर है। सखियों, 2 से 8 अक्टूबर का यह सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि समाज तभी मजबूत बनता है जब उसमें हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान मिले। तो आइए हम इस अस्पृश्यता को मिटाएं और ऐसा समाज बनाने में अपना योगदान दें जहां किसी को यह महसूस ना हो कि वह दूसरों से कम है। इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका इंसान होना है। यह सप्ताह हमें समाज से छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों को दूर करने और समानता भाईचारे की भावनाओं को मजबूत करने का संदेश देता है। तो सखियों, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्यों ना आपका करवा दिया जाए मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ। तो आइए आप और हम मिलकर सुन लेते हैं ये गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए सत्य।

0: तक रहिए।
1: सखियों, आपने सुनाई गीत, उम्मीद करती हूँ आपको यह गीत बहुत पसंद आया होगा। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में। सखियों, हर साल 2 अक्टूबर यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिन महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा का संदेश फैलाना है। सखियों, महात्मा गांधी ने अहिंसा को केवल एक विचार नहीं माना, उन्होंने इसे अपने संघर्ष का रास्ता बनाया। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि अन्याय का विरोध किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हिंसा का सहारा लेना जरूरी नहीं। हिंसा सिर्फ मारपीट ना करने का नाम नहीं है। जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में आता है कि किसी को मारना नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, लेकिन अहिंसा इससे कहीं बड़ी बात है। हमारे शब्द भी किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। किसी को बार बार अपमानित करना, गुस्से में कड़वे शब्द बोलना, किसी की भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाना, यह सब रिश्तों को खराब करते हैं। इसलिए अहिंसा की शुरुआत हमारे व्यवहार और भाषा से भी हो सकती है। गांधी जी ने अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका मानना था कि प्रेम, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका विश्वास था कि अगर हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को शुरुआत खुद से करनी होगी। घर में बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उसे मारने या डराने की बजाय प्यार से समझाया जा सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर बहस या मतभेद हो तो ऊंची आवाज में बहस करने की बजाय बातचीत से समाधान खोजा जा सकता है। सखियों, कई बार हमें लगता है कि गुस्से में तुरंत जवाब देना ही हमारी ताकत है, लेकिन वास्तव में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी एक बड़ी ताकत है। गुस्सा आए तो एक पल रुक जाना, कठोर शब्द कहने से पहले सोच लेना, गलती होने पर उसे स्वीकार कर लेना और विवाद बढ़ाने की बजाय बातचीत का रास्ता चुनना, ये सभी अहिंसा की छोटी छोटी बातें हैं। दुनिया में शांति की शुरुआत केवल बड़े स्तर पर ही नहीं बल्कि हमारे घर, हमारे व्यवहार और हमारे शब्दों से होती है। सखियों, अब जरा अपने आसपास देखिए। पड़ोस में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, बाजार में किसी से कहा सुनी हो सकती है, ऑफिस में किसी से मतभेद हो सकता है, किसी के बात पसंद नहीं आए, परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। हर जगह हमारे सामने एक विकल्प होता है कि हम विवाद को और बढ़ाएंगे या एक कदम पीछे हटकर बात को समझने की कोशिश करेंगे। अहिंसा हमें दूसरा रास्ता चुनने की प्रेरणा देती है, क्योंकि हिंसा से एक समस्या तो समाप्त हो सकती है लेकिन कई नई समस्याएं और पैदा हो सकती हैं। सखियों, बातचीत और समझदारी से समाधान खोजने से रिश्ते बच सकते हैं। मतभेद होना स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को अपनी सोच और भावनाएं होती हैं, लेकिन मतभेद को मनभेद बनने से रोकना हमारे हाथ में है। सखियों, अहिंसा का अर्थ यह भी नहीं है कि अन्याय देखकर हम चुप रहें। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन आवाज उठाने का तरीका शांतिपूर्ण, जिम्मेदार और कानून सम्मत हो सकता है। यानी हम गलत बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करते समय भी हिंसा, नफरत और अपशब्दों से बचने का प्रयास कर सकते हैं। यही अहिंसा की शक्ति है। सखियों, एक शब्द रिश्ता बना सकता है और एक शब्द रिश्ता तोड़ भी सकता है, इसलिए बोलने से पहले भी थोड़ा सोचिए। शायद हमारे सामने वाले को हमारी नाराजगी नहीं, हमारी समझ की जरूरत हो। शायद किसी बच्चे को पिटाई या डांट नहीं, मार्गदर्शन की जरूरत हो। शायद किसी बुजुर्ग को बहस नहीं, केवल दो प्यार भरे शब्दों की जरूरत हो। यही अहिंसा है। महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेते हुए सत्य, प्रेम, धैर्य, सम्मान और अहिंसा हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यही अहिंसा का रास्ता है। सखियों, आज 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर यानी आज ही के दिन मनाई जाती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। देश की आज़ादी में शास्त्री जी का खास योगदान है। साल 1920 में शास्त्री

जी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य है। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह नारा देश के दो महत्वपूर्ण आधारों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है, एक ओर सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवान और दूसरी ओर खेतों में मेहनत करने के देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान। उन्होंने दोनों

हमारा ध्यान दिलाता है। एक ओर सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवान और दूसरी ओर खेतों में मेहनत करने के देश के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान, उन्होंने दोनों के योगदान को देश की ताकत के रूप में सामने रखा। सखियों, उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हुए और आज़ादी के बाद देश की सेवा करते हुए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। उनके जीवन में सबसे बड़ी उनकी सादगी थी। तो आइए जानते हैं उनके विचारों के बारे में और उनकी कुछ जीवन की झलकियों के बारे में। सखियों, वो कम साधनों में अपना जीवन जीते थे। वो अपनी पत्नी को अपने फटे हुए कुर्ते देते और उन्हीं पुराने कुर्तों से रुमाल बनाकर उनकी पत्नी उनको प्रयोग के लिए देती थी। वे मन और कर्म से पूरे गांधीवादी थे। एक बार उनके घर पर सरकारी विभाग की तरफ से कूलर लगवाया गया। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि उनके पुश्तैनी घर में कूलर नहीं है, कभी भी धूप में निकलना पड़ता है, ऐसे आदत बिगड़ जाएगी। उन्होंने तुरंत सरकारी विभाग को फोन कर कूलर हटवा दिया। वो हमेशा सादा जीवन जीने पर ही बल देते थे। सखियों, शास्त्री जी की टेबल पर हमेशा धूप रहती थी। उन्होंने कहा कि सुंदर फूल लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन कुछ दिन में मुरझाकर गिर जाते हैं, लेकिन घास वह आधार है जो हमेशा रहती है, और मैं लोगों के जीवन में घास की तरह ही एक आधार और खुशी की वजह बनकर रहना चाहता हूँ। शास्त्री जी बचपन में पढ़ाई के लिए रोज गंगा नदी तैरकर पार किया करते थे। सिर पर कपड़े और बस्ता रखकर कई किलोमीटर लंबी गंगा को आसानी से पार किया करते थे। बड़े होकर भी वो हमेशा आम आदमी की तरह ही जीवन यापन करते थे। उनकी जीवन शैली जितनी साधारण और प्रभावशाली थी, उतने ही प्रभावशाली उनके विचार और संदेश थे। उनके जीवन से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि कम साधनों में भी संतोष और जिम्मेदारी के साथ जीवन जिया जा सकता है। तो सखियों, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्यों ना करवा दिया जाए मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: सखियों, आपने सुना ये गीत, उम्मीद करती हूँ आपको यह गीत भी बहुत पसंद आया होगा। अब विविधा में हम जान लेते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में। सखियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे, आसपास का वातावरण अच्छा हो और हमारा शहर या गांव भी स्वच्छ दिखाई दे। लेकिन क्या केवल अपने घर की सफाई कर लेना ही स्वच्छता है? बिल्कुल नहीं। स्वच्छता का मतलब है अपने घर के साथ साथ गली, मोहल्ले, सड़क, बाजार और आसपास के सार्वजनिक स्थानों को भी साफ रखना। इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाता है। वर्ष 2026 में यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ था और आज 2 अक्टूबर को इसको समापन है। इस अभियान का संदेश है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत और विकसित भारत। यानी स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सफाई कर्मचारियों या सरकार की नहीं बल्कि हम सब की है। इस बार जन भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान, कचरे का सही प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों के सम्मान पर विशेष जोर दिया गया है। सखियों, अब जरा अपनी दिनचर्या को देखिए। हमारे घर से कूड़ा निकलता है और हम उसे डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन कई बार घर से बाहर की सफाई की और सारा कूड़ा सड़क के किनारे या इधर उधर खाली जगह पर फेंक देते हैं। हमें बस इसी छोटी सी आदत को बदलने की जरूरत है। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना, कचरे को इधर उधर ना फेंकना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना फैलाना, ये छोटे कदम हैं लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो सखियों, बच्चों को भी बचपन से यही आदत सिखानी चाहिए। सखियों, स्वच्छता किसी एक दिन का काम नहीं, अभियान समाप्त हो जाने के बाद भी हमारी आदतें जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा

तभी हम स्वच्छता को अपना पाएंगे। तो सखियों, आपसे बातें करने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे नई विषय व जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आपकी रेडियो सखी आशा गुप्ता को। सखियों, आपको प्यार भरा नमस्कार।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकिता सिंह धान का स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आशा करती हूं कि आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है, चमक दमक के इस दौर में बस सहज बन के रहना है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंपलसिटी यानी की सरलता। आज के इस दौर में हमने मान लिया है कि खुश रहने के लिए बहुत सारी लग्जरी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स का होना जरूरी है, लेकिन जो इंसान अंदर से सरल होता है वो लाइफ की छोटी छोटी चीजों में भी जीवन की सबसे बड़ी खुशी ढूंढ लेता है। उसे खुश होने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती। जब आप अंदर से सहज होते हैं तो आप दिखावे के बंधन से मुक्त होते हैं। आपको किसी को इम्प्रेस करने का कोई स्ट्रेस नहीं होता। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। इस दुनिया में खुद को पा लेना ही सबसे बड़ी खुशी है। जरा सोचिए, जब हम बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो इतने खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सरल होते हैं। उनके पास कोई मास्क या मुखौटा नहीं होता। जो दिल में होता है वही वो चेहरे पर रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास ईगो और एक्सपेक्टेशंस की इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि हमारी सहजता कहीं खो जाती है। जो व्यक्ति सरल है वो कभी भी दूसरों की खुशी देखकर जलता नहीं है, बल्कि उसे सेलिब्रेट करता है। वो हर कंडीशन में, चाहे सिचुएशन बुरी हो या अच्छी, खुद को कंपोज्ड रखता है और अपनी गलतियों पर हंसकर दूसरों को दिल से माफ कर सकता है। जिंदगी की उलझनों ने छीन ली सादगी, वरना इंसान तो हर मोड़ पर मुस्कुराना चाहता है। दोस्तों, हमारे फोन में जितने ज्यादा बैकग्राउंड एप्स खुले रहते हैं, बैटरी उतनी ही ज्यादा खत्म होती है। हमारी लाइफ में भी गुस्सा, जलन और ईगो जैसे बैकग्राउंड एप्स हमारी खुशियों की बैटरी को ड्रेन कर देते हैं। तो क्यों ना आज से हम लाइफ में सादगी को ज्यादा जगह दे और बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग के बजाय चीजों को लेट गो करना सीखे। लाइफ को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़कर उसे ब्यूटीफुल बनाइए। सिंपल रहना सीखिए एवं डाउन टू अर्थ रहिए, क्योंकि असली हैप्पीनेस आपके अपने सरल एवं सहज व्यवहार के अंदर है।

तो फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और हर शुक्रवार हम बात करते हैं विविधा की। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे चिकिता तनी पारती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, चिकिता तनी पारती पर उनके गरीब पिता को इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने खेत गिरवी रख बेटी के लिए धनुष खरीद दिया। बेटी भी पिता की उम्मीदों पर खरी उतरी और देश के लिए 2 गोल्ड मेडल जीत लाई। एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली चिकिता तनी पारती पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चिकिता और अन्य तीरंदाजों की वजह से भारत एशियन गेम्स मेडल टैली में टॉप 10 में जगह बना पाया है। हालांकि चिकिता की सफलता जितनी सुनहरी है, उनका संघर्ष भी उतना ही मुश्किल था। चिकिता एक गरीब किसान परिवार से आती है। उनके पास धनुष खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में पिता ने खेत गिरवी रख बेटी को जरूरी सुविधाएं दी और अब बेटी ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया है। चिकिता मूल रूप से तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सुल्तानपुर गांव की रहने वाली है। स्कूल के दिनों में उनकी रुचि कराटे में थी, लेकिन उनके पिता उन्हें तीरंदाज बनाना चाहते थे। चिकिता के पिता एक गरीब किसान हैं। उनके पिता ने बेटी को महंगे तीरंदाज उपकरण दिलवाने के लिए अपनी फसलें काटने वाली मशीन तक बेच दी थी। बेटी का ध्यान न भटके, इसलिए उनके पिता ने पिछले 8 वर्षों से घर में टीवी एवं स्मार्टफोन नहीं खरीदा। उनके पिता आज भी एक बेसिक कीपैड फोन यूज करते हैं। चिकिता ने 2022 में सोनीपत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई एकेडमी में दाखिला लिया और सीनियर तीरंदाज अभिषेक वर्मा की देखरेख में अपनी कला को निखारा। एशियन गेम्स से पहले उन्होंने कनाडा में आयोजित 2025 और चेरी यूथ चैंपियनशिप में अंडर 21 श्रेणी में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और वो ये खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला कंपाउंडर तीरंदाज

तो दोस्तों अब टाइम हो गया है हमारी आज की दूसरी विविधा के बारे में जानने का। देश भर में बारिश के बाद मौसम बदलने लगा है। तेज गर्मी और उमस के बाद अब सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। वैसे तो सभी को गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन अगर इस बदलते मौसम में सावधानी ना बरती तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मौसम में बदलाव के साथ साथ कई तरह की संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में इन समस्याओं से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। जैसे कि मौसम अब पूरी तरह से ना तो गर्म है और ना ही ठंडा। हो सकता है आपको घर लौटने के बाद अचानक गर्मी लगे, तो ऐसे में ठंडा पानी ना पिए, बल्कि इस मौसम में आप हल्का गुनगुना या नॉर्मल पानी पी सकते हैं। कुछ लोग अभी भी ठंडे पानी से नहा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ही बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में आप गुनगुने पानी से नहाएं। वैसे तो ज्यादातर सब्जी और फल पूरे साल मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मौसम के मुताबिक आती हैं। मौसमी खाने की चीजों को खाने का अपना ही फायदा है। इसमें ताजा कटे हुए फल जैसे आलू बुखारा, संतरे एवं अनानास जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। दोस्तों मौसम अब हल्का ठंडा हो गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अभी से ऊनी कपड़े पहन ले। हालांकि इस मौसम में आप फुल स्लीव्स कपड़े पहन सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज से आपकी बॉडी और माइंड रिफ्रेश होते हैं, और एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखने में भी मदद करती है। आप घर पर भी योगा कर सकते हैं। बदलते मौसम में हर्बल चाय पीनी चाहिए। ऐसा करने से आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी हेल्प मिलती है। आप हर्बल चाय ग्लोए और तुलसी पत्ते से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ सावधानियां जिन्हें अपनाकर आप बीमारियों से बच सकते हैं।

तो दोस्तों अब टाइम हो गया है हमारी आज की जानकारी के बारे में जानने का। आप तो जानते ही होंगे कि आज क्या है। आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 15 जून 2007 में की गई, जिसके बाद 2 अक्टूबर 2007 को इसे पहली बार मनाया गया। इस दिन को दुनिया के 193 देशों में से 140 देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अमेरिका, अफ्रीका, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश शामिल है। गांधी जी हमेशा अहिंसा को ही अपना परम धर्म मानते थे और वे सभी को अहिंसा परमो धर्म की सीख दिया करते थे। दोस्तों तो अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। इसको मनाने का उद्देश्य अहिंसा के संदेश का प्रसार करना है तथा शांति, सहिष्णुता, समझ एवं अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। इस दिवस की शुरुआत 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में भारत द्वारा रखे गए प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन मिलने के बाद विश्व भर में शांति संदेश को बढ़ावा देने एवं गांधी जी के योगदानों की सराहना करने के मकसद से शुरू किया गया। अहिंसा का महत्व हमारे या किसी भी व्यक्ति के जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज से पहले के इतिहास में झांके तो हम पाएंगे कि कई बड़े बड़े देश हिंसा तथा युद्ध की बलि चढ़ गए और जिन्होंने हिंसा का वो मंजर देखा वो अब युद्ध की बात नहीं करते। गांधी जी ने भी युद्ध और हिंसा का अंजाम खुद अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो अहिंसा के पुजारी बन गए। हमें भी अपने जीवन में हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपनाना चाहिए।

और दोस्तों देखिए ना, बात ही बातों में पता ही नहीं चला और अब टाइम हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो अपनी दोस्त अंकिता सिंह धानका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। कैप्टन स्मित मच्छार ने दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल

0: इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए। अब आपको जानकारी देते हैं आज के शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:10 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पे सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पे आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, 7:30 पे सुनिए फिल्म संगीत, 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, 8:45 पे आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से, 9:15 पे सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, 10:00 आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल आकाशवाणी दिल्ली से, 10:20 पे सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और आज की हमारी सभा समाप्त होगी 11:05 पर।

लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 6:05 पे आप सुनेंगे वंदनवार, 6:30 पे सुनिए झरोका, 6:35 पे सुनिए रामचरित मानस गान, 6:45 पे आप सुनेंगे संगीत सरिता। कल सुबह 7 बजे आप सुनेंगे नमस्कार अलवर, 7:30 पे सुनिए फिल्म संगीत, 8 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, 8:15 पे आप सुनेंगे सुगम संगीत, 8:30 पे सुनिए बातें फिल्मों की। कल सुबह 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले किए जाएंगे, 9:10 पे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 9:45 पे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। कल 5:30 पे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 6:10 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पे सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पे आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पे सुनिए फिल्म संगीत। कल रात 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 8:45 पे आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:15 पे सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 MHz पर शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में सिलसिला फिल्म से गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत से संवारा है शिव हरी ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरपंच गांव के विकास की धुरी, गांव के हर व्यक्ति का विश्वास कायम रखना उनकी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं ने आज मुख्यमंत्री से संवाद किया, नशा मुक्त भारत की शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज विशेष ग्राम सभाओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए। और एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी, आज 6 और स्वर्ण पदकों पर जमाया कब्जा, अब तक 16 स्वर्ण किए हासिल। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरपंच गांव के विकास की धुरी है और सरकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। आज जयपुर में पंचायती राज जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के गरीब, मजदूर और किसान की कोई भी समस्या छोटी नहीं होती, इसलिए पंचायत प्रतिनिधि को गांव के हर व्यक्ति का विश्वास कायम रखते हुए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच गांव की उम्मीद का पहला केंद्र है और गांधी जी के राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है।
1: सरपंच देश के विकास की धुरी है। जो भी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी पैसा आएगा वो निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से नीचे जमीन पर उतरेगा। गांव का व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सबसे पहले अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास जाता है और उसको बड़ी आशा और उम्मीद होती। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि आप सरपंच हैं, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे समस्या छोटी हो चाहे वो बड़ी हो।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए सरपंचों, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया और सरपंचों ने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज स्मार्ट मूल निवास प्रमाण पत्र सुविधा और खेलो राजस्थान पोर्टल का शुभारंभ किया। जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने 3,075 करोड़ रुपए के 668 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऊर्जावान युवा राष्ट्र की असली शक्ति है और इसे नशे की लत से बचाना सबकी साझा जिम्मेदारी है। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए स्वस्थ और अनुशासित युवा का होना जरूरी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं और लोगों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई और सभी को विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में युवा और खेल मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से तैयारी की जानी चाहिए।
2: जो अवसर राजस्थान में बढ़ रहे हैं हमारे युवाओं के लिए, जहां राजस्थान सरकार की नौकरियां हैं उसी के साथ साथ गैर सरकारी नौकरियां भी हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके कारण 2047 का जो भारत बनेगा, उस भारत के अंदर हमारे आज जो युवा स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम्स में बैठे हैं, खेल के मैदान में जो दौड़ रहे हैं, उनका भारत होगा 2047 का। और जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक की तैयारी एक दिन में नहीं होती, उसी तरह विकसित भारत की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। आज से शुरू करेंगे तब 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित भारत बनेगा। हमारे युवा ड्राइव करेंगे हमारे देश को विकसित भारत बनने।
0: समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री के विश्नोई और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित प्रदेश के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे। जिला मुख्यालय

0: यहां पर भी सेवा संकल्प अभियान के तहत रोजगार उत्सव रखे गए। आयोजनों में नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जोधपुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में शामिल भारतीय लड़ाकू विमानों की दूसरे देशों द्वारा भी प्रशंसा की जा रही है। फ्रांस के एयर डिफेंस डिप्टी कमांडर जनरल जूलियन सबेने ने भारतीय लड़ाकू विमानों की क्षमता और विविधता की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल इस अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि तरंग शक्ति अभियान से भारत और फ्रांस को अपने नीतिक और प्रचालन अनुभवों को एक दूसरे से साझा करने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभ्यास में फ्रांस के राफेल A330 और A400M विमान भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। संग्रह में दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी यादगार वस्तुएं, धार्मिक वस्तुएं, एक पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsJaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। इस अवसर पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शास्त्री जी को भी विजय घाट स्थित समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महात्मा गांधी को याद किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सचिवालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कड़ी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने अपने आवास पर श्रम दान कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ते हुए लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता के प्रति अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की अपील की। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी समारोह पूर्वक मनाई गई। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से आज से देश भर में खादी महोत्सव की शुरुआत हुई। आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की। जयपुर में खादी आयोग के मिशन निदेशक डॉ. राहुल मिश्रा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि प्रदेश में आज से खादी उत्पादों पर 50% तक की विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और खादी आज युवाओं के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है।
1: खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से और राज्य के जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड्स हैं हर पूरे देश भर में 17 सितंबर से हमारा सेवा संकल्प खादी महोत्सव 2026 जो है वो शुरू हुआ है और इस दौरान आज 2 अक्टूबर सारे हमारे जो खादी भंडार और भवन है वहाँ पर ग्राहकों की बहुत सारी भीड़ है। लोगों में उत्साह है, खादी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और राजस्थान में स्पेशली पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर से लेकर के और 30 जनवरी तक ये रिबेट दी जाती है ग्राहकों को और जो कि 50% तक होती है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। सभाओं में गांव से जुड़े मुद्दों और कुरीतियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाई गई। झुंझुनू जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत पंचायतों में इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक संकल्प दिलाया गया। इस दौरान बाल अधिकारिता विभाग

0: की टीम ने ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम कानून की जानकारी दी और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। रेलवे ने अपनी गाड़ियों और रेल परिसरों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस के तहत इस अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर जयपुर स्थित कार्यालय में रेल कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों, कारखानों, स्टेशनों, कार्यालयों, कॉलोनियों और रेल परिसरों में रोजाना अलग अलग थीम पर कार्यक्रम रखे जाएंगे। इस दौरान रेल में सफर करने वाले यात्रियों को भी जोड़ा जाएगा। और अब खेल। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज अब तक 6 और स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिए हैं। आज खेले गए महिला हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं भारत की पुरुष हॉकी टीम स्वर्ण पदक के लिए मलेशिया के साथ फाइनल मुकाबला खेल रही है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदियेव को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश को एक और स्वर्ण दिलाया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। आज दिन की शुरुआत महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीतने के साथ की। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। रिकर्व मिक्स टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। पुरुषों की सेप कटकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने अंक तालिका में अब तक 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 76 पदक हासिल किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, सरपंच गांव के विकास की धुरी, गांव के हर व्यक्ति को विश्वास कायम रखना उनकी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं ने आज मुख्यमंत्री से संवाद किया, नशा मुक्त भारत की शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज विशेष ग्राम सभाओं के साथ स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए। और एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी, आज 6 और स्वर्ण पदकों पर जमाया कब्जा, अब तक 16 स्वर्ण किए हासिल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से सलूम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है कमलेश कुमार झाड़ोला ने। सलूम्बर जिले में नगर परिषद चुनाव के बाद अब जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जिला परिषद के 21 वार्डों, 7 पंचायत समितियों और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी के चलते मतदान केंद्र, कार्मिक प्रशिक्षण, वाहन, ईवीएम, रूट चार्ट और कानून व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा भी की गई। नए मतदाताओं, खासकर 18 से 20 साल के युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया गया। इससे पहले जिले में हुए नगर परिषद चुनाव में शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 25 वार्डों के लिए हुए चुनाव में 78.69% मतदान रहा। 14 सितंबर को मतगणना में भाजपा को 12, कांग्रेस को 11, बीएपी को 1 और निर्दलीय को 1 वार्ड मिला। वार्ड 14 में दोनों प्रत्याशियों को बराबर 154 वोट मिलने पर लॉटरी से फैसला हुआ। सभापति पद पर नरेश कुमार जैन और उपसभापति पद पर डॉक्टर लव व्यास निर्वाचित हुए। सितंबर माह में गांवों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए सेवा सेतु और विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत शिविर लगाए गए। पंचायत समिति मुख्यालय से लेकर गिरदावर सर्किल तक शिविर हुए। इनमें राजस्व, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित 22 विभागों ने एक साथ लोगों को सेवाएं प्रदान की। राशन कार्ड में आधार सीडिंग, ईकेवाईसी, एलपीजी आईडी मैपिंग और खाद्य सुरक्षा

0: से जुड़े लंबित काम भी इन शिविरों में किए गए। जिला प्रशासन ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों पर भी नजर रखी। जिले में सेवा सेतु और विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत गांवों में शिविर लगाए गए। इन शिविरों में राजस्व, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित 22 विभागों ने सेवाएं दी। राशन कार्ड में आधार सीडिंग, ई केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग जैसे काम भी हुए। पिछले दिनों जिले में रात्रि चौपाल भी आयोजित की गई। घोड़सर और भबराणा जैसे इलाकों में अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। सड़क, बिजली और पानी जैसी समस्याओं के मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए। सितंबर माह में जिले के विकास कार्यों को लेकर भी बड़ा आंकड़ा सामने आया। डीएफएमटी के तहत सलूम्बर जिले के 176 विकास कार्यों के लिए 16 करोड़ 94 लाख रुपए मंजूर किए गए। इनमें 88 स्कूलों की मरम्मत, 47 उप स्वास्थ्य केंद्र और 40 नए कक्षा कक्ष शामिल हैं। खोलड़ी में जिला स्तरीय खेल परिसर के लिए 8 हेक्टेयर जमीन तय की गई है, जहां 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर हॉल और विभिन्न खेलों की सुविधाएं प्रस्तावित हैं। वहीं सिंचाई के क्षेत्र में सराड़ा सलूम्बर इलाके में 56 लाख रुपए से ज्यादा की सोलर आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना पर काम जारी है। पाइपलाइन बिछाने से 327 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। सितंबर महीने में स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां भी कम नहीं रही। नए जिला अस्पताल की शिफ्टिंग की तैयारियों को लेकर अलग अलग विभागों के साथ निरीक्षण और मॉक ड्रिल की तैयारी हुई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डॉक्टरों, स्टाफ, मशीनों और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। सीएससी लसाड़िया और सैटेलाइट अस्पताल चावंड के लिए डीएफएमटी से मिली 2 सोनोग्राफी मशीनों को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। पिछले दिनों पिलादर में आयुर्वेद शिविर लगाया गया। शिविर में 60 मरीजों की जांच हुई। वहीं सराड़ी में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और योग शिविर लगाया गया, जिसमें 39 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खाद्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की। नमूने लिए गए और करीब 15 किलो अवधि पार या दूषित खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई। जिले के घावड़ी, मगरी, ईसरवास में एक पेड़ मां यशोदा के नाम अभियान के तहत 500 पौधे लगाए गए। करीब 350 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वट, पीपल, आंवला, अमलतास, खैर और कचनार जैसे पौधे लगाए गए। इसके साथ ही सलूम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो सरपंच गांवरा विकास श्री धूरी गांवरा हर मिनखरा भरोसा ने कायम राखनो वारी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम री मार्फत प्रदेश रा नौजवाना आज मुख्यमंत्री साथे करी बतल नशा मुक्त भारत री शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहली रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री री जयंती माथे आज खास ग्राम सभावां रे साथे स्वच्छता कार्यक्रम विया। और एशियाई खेला माय भारत री स्वर्णिम नुमाइश चाल रही है। आज 6 और सोनारा तमगा माथे जमायो कब्जो, अजे ताई 16 सोनारा तमगा हासिल करिया। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो है के सरपंच गांवरा विकास री धूरी है और सरकारी योजनावारी जानकारी आखरी लेन ताई पुगावन री जिम्मेदारी उनरी होवे है। आज जयपुर माय पंचायती राज जन प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम माय मुख्यमंत्री कयो के गांवरा गरीब मजदूर और काश्तकार री कोई समस्या छोटी नहीं होवे। इशारू पंचायत नुमाइंदा ने गांवरा हर मिनखरा भरोसा ने कायम राखता काम करनो चाहिए। मुख्यमंत्री कयो के सरपंच गांवरी उम्मीद रो पहलो केंद्र है और गांधी जी रा राष्ट्र निर्माण री आधारशिला है।
2: सरपंच देश के विकास की धुरी है। जो भी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी पैसा आएगा वो निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से नीचे जमीन

0: पर उतरेगा। गांव का व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सबसे पहले अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास जाता है और उसको बड़ी आशा और उम्मीद होती है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि आप सरपंच हैं, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे समस्या छोटी हो चाहे वो बड़ी हो।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश भरू आया सरपंचा पंचायती राज नुमाइंदा साथे बतल करी। जिला मुख्यालय माथे कार्यक्रम रो सीधो सजीव प्रसारण वीओ और सरपंच आपरी बात राखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज स्मार्ट मूल निवास प्रमाण पत्र सुविधा और खेलो राजस्थान पोर्टल की शुरुआत करी। जयपुर रा भवानी निकेतन कॉलेज में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करता मुख्यमंत्री 3075 करोड़ रुपया रा 668 विकास कामारो लोकार्पण करियो और नींव धरी। ई मौके वणा कयो के ऊर्जावान नौजवान देश री असली ताकत है और वाने नसारी लतों बचावणो सबरी भेली जिम्मेदारी है। श्री शर्मा कयो के विकसित भारत रा लगत सारो स्वास्थ्य और अनुशासित नौजवान रो वेणो जरूरी है। कार्यक्रम आए मुख्यमंत्री नौजवाना और लोगों ने नशा मुक्त भारत री शपथ दिराई और सगला ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान सारू मिलने काम करने रो संकल्प दिरायो। कार्यक्रम रे पछे खबर नवी सो बतल करता नौजवान और खेल मामला रा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कयो के आज रो नौजवान काले रो भविष्य है और साल 2047 रा विकसित भारत रा लगस ने हासिल करण सारू आज हुई तैयारी करी जावनी चाहिए।
2: जो अवसर राजस्थान में बढ़ रहे हैं हमारे युवाओं के लिए, जहां राजस्थान सरकार की नौकरियां हैं उसी के साथ साथ गैर सरकारी नौकरियां भी हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके कारण 2047 का जो भारत बनेगा उस भारत के अंदर हमारे आज जो युवा स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम्स में बैठे हैं, खेल के मैदान में जो दौड़ रहे हैं, उनका भारत होगा 2047 का। और जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक की तैयारी एक दिन में नहीं होती, उसी तरह विकसित भारत की तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। आज से शुरू करेंगे तब 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित भारत बनेगा। हमारे युवा ड्राइव करेंगे हमारे देश को विकसित भारत बनने।
1: जलसा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राज्य मंत्री के विश्नोई और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास समेत प्रदेश रा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रिया। जिला मुख्यालय माथे सेवा संकल्प अभियान रे तहत रोजगार उत्सव राखी जा आयोजन में नुआ नियुक्त कार्मिका ने नियुक्ति पाना बांटी जा और जयपुर में व्या राज्य थर्रा कार्यक्रम और सीधो प्रसारण करी जो। जोधपुर में व्या बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में भेड़ा भारतीय लड़ाकू विमानारी दूजा देशा कानियों सराहना करी जावे। फ्रांस रा एयर डिफेंस डिप्टी कमांडर जनरल जूलियन सबे ने भारतीय लड़ाकू विमानारा बूंता और विविधता ने सराया और कयो के दोनों देशों रे बीचे आपसरी तालमेली अभ्यास रो महत्व हिस्सो है। आकाशवाणी सारू बतल माय वणा कयो के तरंग शक्ति अभियान भारत और फ्रांस ने आपरा रणनीतिक प्रचालन अनुभव ने साझा करण रो मौको मिलेला। ध्यान जोगे के 12 अक्टूबर ताई चालन वाला ई अभ्यास माय फ्रांस रा राफेल A330 और A400M विमानी भेड़ाविया है। प्रधानमंत्री ने मिलिया निजराना री ई नीलामी री 8वीं कड़ी 31 अक्टूबर ताई बधा दी रेजी है। संस्कृति मंत्रालय बतायो कि ई चरण में दिल्ली रा न्यारा न्यारा पहलवान ने दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह भेड़ा है। आ 30 स्मृति चिन्ह में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार चीजा, 6 मूर्त और प्रतिमा भेड़ी है। आ चीजा में दिल्ली मेट्रो रा 2 मॉडल, खेलों जुड़ी यादगार चीजा, धार्मिक चीजा और एक पेंटिंग, कलाकृतियां और हाथों बनी चीजा भेड़ी है। मंत्रालय कहो कि नीलामी मिलन वाली रकम नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दी जाएला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहली रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती माथे वाने सिरधारे साथे याद करे। ई मौके देश प्रदेश माय न्यारा न्यारा कार्यक्रम रो आयोजन करीजो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई मान्यता लोगा

0: नवी दिल्ली में राजघाट माथे महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पण करी। वठे शास्त्री जी ने विजय घाट माथे वाणी समाधि माथे सिरदारा फूल अर्पण करी जिया। प्रदेश भर में व्या न्यारा न्यारा कार्यक्रम मार्फत महात्मा गांधी ने याद करी जिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा गांधी सर्किल माथे राष्ट्रपिता ने पुष्पांजलि अर्पण करी। ई मौके सचिवालय में सर्वधर्म प्रार्थना समारोह आयोजन करी जो। ई कड़ी में स्वच्छता ही सेवा अभियान रे तहत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा आपरा रहवास माथे श्रमदान करने स्वच्छता रो संदेश दियो। वना स्वच्छता ने जन भागीदारी जोड़ता लोगों ने सफाई और स्वास्थ्य समाज सारू आगे आवण री अरज करी। वना प्रदेशवासियों स्वच्छता रे प्रति आपरा दायित्व ने निष्ठा रे साथे निभावण री अरज करी। महात्मा गांधी री जयंती आज वैश्विक थर्माथे जलसापूर्ण मनाई जी। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशना ई मौके गांधी जी री मूर्त माथे पुष्पांजलि अर्पण करी और सत्य अहिंसा और शांति रा वारा संदेश ने याद करिया। गांधी जयंती रे मौके खादी और ग्रामोद्योग आयोग कानियों आज देश भर में खादी महोत्सव री शुरुआत हुई। आयोग रा अध्यक्ष मनोज गोयल नई दिल्ली में इन री शुरुआत करी। अठीने जयपुर में खादी आयोग रा मिशन निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा आकाशवाणी बतलमाए बतायो कि प्रदेश में आज खादी उत्पादा माथे 50% तारी खास छूट दी जावे। वना बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में लाडला 12-13 साल में खादी नवी ऊंचाइयां हासिल करी है और खादी आज नौजवाना सारू फैशन स्टेटमेंट बन गयो है।
1: खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से और राज्य के जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड्स हैं हर पूरे देश भर में 17 सितंबर से हमारा सेवा संकल्प खादी महोत्सव 2026 जो है वो शुरू हुआ है और इस दौरान आज 2 अक्टूबर सारे हमारे जो खादी भंडार और भवन है वहाँ पर ग्राहकों की बहुत सारी भीड़ है, लोगों में उत्साह है, खादी के प्रति जागरूकता बढ़ी है और राजस्थान में स्पेशली पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर से लेकर के 30 जनवरी तक ये रिबेट दी जाती है ग्राहकों को और जो कि 50% तक होती है।
0: गांधी जयंती रे मौके प्रदेश भर में आज खास ग्राम सभा रो आयोजन करी जो। सभा में गांवों जुड़िया मुद्दा कुरीतियां रा बारा में जाग जगाई जी। झुंझुनू जिला में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान रे तहत पंचायत में इन रोकथाम सारू भेड़ो संकल्प दिराई जो। ई दौरान बाल अधिकारिता महकमा री टीम गांव वाला ने बाल विवाह रोकथाम कानून री जानकारी दी और इनरा कुप्रभाव सारू जाग जगाई। ने अबे एशियाई खेल जापान में वेरिया एशियाई खेला में भारत शानदार नुमाइश करता आज अजय ताई 6 और सोना रा तमगा आपरी झोली में डाल लिया है। आज खेली जा महिला हॉकी रा फाइनल मुकाबला में भारत चीन ने 1-0 हरार सोना रा तमगा ने कब्जा माय करियो। वठे भारतीय पुरुष हॉकी टीम सोना रा तमगा सारू मलेशिया रे साथे फाइनल मुकाबलो खेल रही है। इनु पहला भारतीय पहलवान सुजीत कलकल फ्री स्टाइल 65 किलो भार माय ताजकिस्तान रा अब्दुल माजिद कुदियेव ने हरार सोना रो तमगो जीतियो। मुक्केबाजी रा 80 किलोग्राम भार वर्ग माय अंकुश पंधाल सोना रा तमगा माथे आपरो नाम करियो। महिला मुक्केबाजी रा 65 किलोग्राम वर्ग माय प्रवीण हुड्डा चीनी ताइपेरी मुक्केबाज ने हरार सोना रा तमगा माथे कब्जो करियो। वठे मुक्केबाजी रा 75 किलोग्राम भार वर्ग माय लवलीना बोरगोहेन ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करता देश ने 1 और सोना रो तमगो दिरायो। आज दिन री शुरुआत महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम 10-बारी ओलंपिक चैंपियन दक्षिणी कोरिया ने 5-3 हरार स्वर्ण पदक जीतन ने शुरू करी। फिर वहीं पुरुष रिकर्व टीम फाइनल में दक्षिणी कोरिया हार ने चांदी रा तमगा माथे संतोष करियो। रिकर्व मिक्स टीम तीरंदाजी में ही भारत ने चांदी रो तमगो मिलियो। रिकर्व मिक्स टीम में पुरुषों री सेपक टकराई सेमीफाइनल में भारत कांस्य रो तमगो हासिल करियो। भारत अजे ताई पदक तालिका में 16 सोना रा 25 चांदी रा और 35 कांसी रा तमगा हासिल करने 76 तमगा जीत लिया है। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो सरपंच गामरा विकास री धूरी गामरा हर मिनक रा भरोसा ने कायम राखनो वारी जिम्मेदारी। सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम री मार्फत प्रदेश रा नौजवाना माय आज मुख्यमंत्री साथे बतल करी नशा मुक्त भारत री शपथ ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहली रा प्रधानमंत्री लाल

शास्त्री री जयंती माथे आज खास ग्राम सभा रे साथ स्वच्छता कार्यक्रम भी आ और एशियाई खेला माए भारत री स्वर्णिम नुमाइश चाल रही है। आज छह और सोनारा तमगा माथे जमायो कब्जो, अजय ताई 16 सोनारा तमगा हासिल करिया। ने इंडर साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरवियो मांगरो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को सुरेंद्र कुमार की राम राम। और देखो किसान भाइयों, आज अपन ग्राम भारती कार्यक्रम में चर्चा का जो अपना विषय रहेगा अक्टूबर माह के कृषि कार्य, तो अक्टूबर माह में अपने को क्या क्या कार्य कर रहे हैं उन पर बातचीत करेंगे और किसान बहन भाइयों को जानकारी दिलवाएंगे प्याज की में अधिक पैदावार कैसे ले प्याज की फसल में। और ये जानकारी अपन ग्राम मकबरपुर के प्रगतिशील किसान श्री राशिद खान जी से भेंटवार्ता करके लेके आए, तो वो सुनवाएंगे और साथ में किसानों से जानकारी की बातें देंगे। अभी से करें सरसों की बुआई की तैयारी और साथ में किसान बहन भाई को मनोरंजन से करवाएंगी, लोकगीत से कराएंगे मनोरंजन। तो अपन अपनी आज की जो चर्चा है उसको अपन जारी रखते हैं। तो अक्टूबर माह में अपने को क्या क्या कार्य करने, सबसे पहले तो अपने को अक्टूबर माह में जो फसल उत्पादन से संबंधित जो कार्य हैं उनकी किसान बहन भाई को जानकारी देंगे। जैसे अपनी जो जौ की फसल है ये बहुत ही अच्छी फसल है, इसमें यानी जौ की अपन अगेती बुआई यानी मध्य अक्टूबर से और नवंबर तक इसकी बुआई कर दें, यानी अगेती बुआई कर देंगे तो अपने को अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो जौ की बुआई की किसान बहन भाई को तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए और जौ के लिए अपन से अपने को 100 से 120 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। इसके बाद में अपन सरसों की जो बुआई है वो बारानी क्षेत्र में अपन 15 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक बुआई अपने को कर लेनी चाहिए और जो सिंचित क्षेत्र हैं उसमें बुआई कुछ देरी से भी अपन कर सकते हैं, यानी अक्टूबर के अंत तक उसकी बुआई कर देनी चाहिए। और जो सिंचित क्षेत्र हैं उनमें अपने 2.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है और जो असंचित क्षेत्र है वहाँ बीज की थोड़ी मात्रा अपने को अधिक लेनी पड़ती है, वहाँ 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। अब बात आती है सरसों के बीज को अपन भाई उपचारित करके बोएं तो उसमें जैसे सफ़ेद रोली रोग है या और बहुत सारे रोग है वो नहीं लग पाएंगे। इसके लिए अपने को क्या है मेटालेसिक्स 35 cc दवा 6 ग्राम जो प्रति किलो बीज के उपचारित करके बोएं, मैनकोजेब और मेटालिक्स में से कोई सी दवा लेके और उसको उपचारित करके बोएं। और इसमें सबसे पहले पेंटेड बग लगती है सरसों की फसल में, उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए इमेडा क्लोरपेड नाम की 70 WS नाम की दवा आती है, 5 ग्राम दवा से प्रति किलो बीज को उपचारित करके भी अपने को बो देना चाहिए। अब तिलहन व दलहनी फसलों की बुआई पूर्व अपने को 250 किलोग्राम तो जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम लेने चाहिए और असिन क्षेत्र में जैसे चने की जो फसल है उसको मध्य अक्टूबर से लेके और अक्टूबर अंत तक बुआई कर सकते हैं। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 50 किलो बीज और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को कतार से कतार की दूरी पर बुआई कर देनी चाहिए। अब इसके बाद में अपने पास बागवानी की जो फसलें हैं उनमें भी अपने को बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं इस समय, जैसे आम के जो पौधे होते हैं उनमें मिलीबग नाम का जो कीट है वो आक्रमण इस समय पर करता है, तो उसके बचाव के लिए अपने को जो शिशु

0: छोटे कीट हैं उनको पेड़ों पर उतरने से रोकने के लिए अपने को क्या करना है कि करना चाहिए, एल्काथीन 400 गेज की 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी जमीन से 2 फुट ऊंचाई पर तने से चारों तरफ बांध देनी चाहिए और उस पर ग्रीस का लेप कर देना चाहिए, जिससे क्या है वो पेड़ के पर मिलीबग न चढ़ सके। और अगर इससे भी रोकथाम नहीं होती है तो डाइमिथ्योट 30 सीसी नाम की दवा आती है जो 1.5 मिली या ट्राइकोजो फोस 40 सीसी 2 मिली दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और अपने को छिड़काव कर देना चाहिए। बेर में इस महा जो यूरिया की मात्रा है वो यानी 600 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से अपने को डाल देनी चाहिए। ये तो बात करी अपने बागवानी की। इसके बाद में अपनी सब्जी वाली फसलें हैं जैसे टमाटर की जो सर्दी की फसल है वो बुआई हेतु अपने को तैयार रहती है और खेत में 75x75 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने को रोपाई कर देनी चाहिए और रोपण पूर्व खेत की तैयारी अपने को सही तरीके से कर देनी चाहिए। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी चाहिए, 150 क्विंटल गोबर की खाद, नत्रजन 80 किलो और फास्फोरस 80 किलो और पोटास 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला के और उसमें 4-5 जुताई लगा के खेत को नम और भुरभुरा करके और उसमें बुआई कर देनी चाहिए। और रबी जो फसल की प्याज है उसकी भी पौध अपने को नर्सरी तैयारी कर लेनी चाहिए और एक हेक्टेयर में बुआई के लिए अपने को करीब 10 किलो बीज की नर्सरी तैयार करनी चाहिए और उसको अपने को लगा देनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई पुष्पों उत्पादन से संबंधित भी जानकारी अक्टूबर माह में चाहेंगे किसान बहन भाई, तो इसके लिए क्या है ग्लेडियोलस के कंदू को 2 ग्राम के जो बावस्टीन है 1 लीटर पानी में दर से घोल मिलाकर और 10-15 मिनट तक डबो के और उनको उपचारित करने के बाद में 20x30x20 सेंटीमीटर की दूरी पर 8-10 सेंटीमीटर की गहराई पर उसकी रोपाई अपने को कर देनी चाहिए। और जो पूर्व क्यारियों में प्रति वर्ग मीटर 5 ग्राम कार्बोफ्यूरान आवश्यक रूप से अपने को मिला देना चाहिए और एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए लगभग अपने को 1.5 से 2 लाख कंदू की आवश्यकता होती है। इस तरीके से ग्लेडियस होता है उसकी बुआई कर सकते हैं और गुलाब के पौधे हैं उनमें इस समय कटाई छटाई करके और उनको सही तरीके से बना देना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे सौंफ की जो उन्नतशील किस्में हैं RF-101 RF-125 इसकी जो बीज दर की मात्रा है वो 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की होती है और इसकी बुआई अपने को कर देनी चाहिए। और चारे वाली जो फसलें हैं जैसे बरसीम की फसल है उसकी भी बुआई अपने को इस माह में कर देनी चाहिए और 25-30 किलोग्राम बीज एक साथ एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है उसकी बुआई अपने को कर देनी चाहिए। और बरसीम की जो उन्नत किस्में हैं वरदान मिस्काबी पूसा ज्वाइंट BL-10T-780 T-724 T-500S-99-1 आदि किस्में हैं और जो जई की है उसकी भी उन्नतशील किस्में हैं जैसे कैंट है ORS है UPO है OS-9 है इनकी बीज की दर मात्रा 100 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। और साथ साथ अक्टूबर माह में अपने पशु में भी अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, पशुपालन में भी पशु में जैसे बहुप्रजावी जो बहुपरजीवी होते हैं उनके बचाव के लिए अपने को पशु चिकित्सक की सलाह लेके और पशुशाला में दवाई का छिड़काव कर देना चाहिए और पशु को 50-60 ग्राम खनिज लवण या 20 ग्राम नमक रोजाना अपने को पशु को देना चाहिए जिससे पशु स्वस्थ और सही बना रहे। तो इस तरीके से अपने ये चर्चा करी अक्टूबर माह के कृषि कार्य। और अब किसान बहन भाइयों को हम दिलवाते हैं भेंट वार्ता, प्याज की फसल में अधिक पैदावार कैसे लें, ग्राम अकबरपुर के प्रगतिशील किसान राशिद खान से बातचीत करी, तो सुनो किसान बहन भाई।
1: और हमारे साथ प्रगतिशील किसान श्री राशिद खान जी उपस्थित हैं जो आज हमें बताएंगे प्याज से अधिक पैदावार कैसे लें। नमस्कार राशिद जी।
2: नमस्कार जी। नमस्कार।

0: देखो राशि जी, ये बताएं कि अपन जो प्याज की फसल अपने यहाँ अकबरपुर और इसके आसपास में बहुत अधिक मात्रा में होती है और बहुत ही अच्छी पैदावार इसकी होती है, किसान भाई बहुत समृद्ध रहते हैं इससे
1: जी,
0: तो इसकी ज्यादा अच्छी पैदावार किसान भाइयों को हो और अच्छा बाजार अपने किसान भाइयों को मिले, तो क्या किस हिसाब से जमीन की तैयारी करते हैं, क्या कैसे पैदावार इसकी लेते हैं, बताएं थोड़ा।
1: देखो साहब, सबसे पहले तो क्या है, जो जमीन होती है उसकी बढ़िया तरीके से कल्टीवेटर से या पहले हैरो की जुताई करवाएं, उसके बाद कल्टीवेटर से उसकी अच्छी तरीके से जुताई करवाएं, और फिर अपना जो जब भी हम उसमें खाड़े खींचते हैं, जो प्याज लगाते हैं जिन खाड़ों में, तो अपने DAP या ऐसा कोई अन्य रासायनिक उर्वरक जरूर डालें उसमें, ताकि प्याज का जो बीज है वो अच्छी तरीके से फूटे और बढ़िया पैदावार दे।
0: प्याज ये बताएं, क्या देसी खाद भी डाल देंगे प्याज की जब बुआई करते हैं?
1: देखो, जुताई से पहले देसी खाद डाल के और तभी खेतों की बढ़िया तरीके से जुताई करवानी चाहिए, और खाड़ा काटते समय फिर आपको DAP का एक बार छिड़काव जरूर करना चाहिए।
0: अच्छा, अंतिम जुताई में मतलब DAP का छिड़काव करें, जिससे जो खाड़े बनाए उनमें आ जाए और फसल, मुख्य फसल जो अपन प्याज की रुपाई करें उस समय उनको उपलब्ध हो जाए।
1: जी सर जी, उससे क्या पैदावार अच्छी होने का आसार बहुत ज्यादा होते हैं।
0: तो ये सब काम तो मशीनरी द्वारा ट्रैक्टर से ही होते होंगे सब?
1: जी सर, ये सारे काम ट्रैक्टर से ही होते हैं, खाड़े भी ट्रैक्टर से खींच जाते हैं, और जो रूटर है उसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, तो रूटर एक बार लगवा ले तो उससे जमीन जो बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी में तब्दील हो जाती है, बढ़िया एकदम तैयार हो जाता है खेत,
0: मिट्टी बारीक हो जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बारीक मिट्टी हो जाती है रूटर से, तो पैदावार होने के चांस और ज्यादा होते हैं उससे।
0: तो जो आप इसमें जब आप खाड़े जब अपने तैयार हो जाते हैं, तो बीज कहाँ से लेके आते हैं, जो रुपाई के लिए जो बल्ब आते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं आप लोग?
1: देखो जी, बीज तो ज़्यादातर तो हमारे आसपास के यहाँ के तो किसान खुद ही पैदा करते हैं, और अच्छी क्वालिटी का बीज खुद ही पैदा करके और उसी का बीज बना के तब प्याजों में लगाया जाता है, खेतों में लगाया जाता है जिसको।
0: जी जी, अब इस समय जो उपयुक्त समय चल रहा है प्याज बुआई का?
1: जी, ये सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि ज़्यादा खेती प्याज हम कई बार लगा देते हैं तो उसमें रोग आने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, तो प्याज की जो फसल है इसको ज़्यादा बारिश है जो ज़्यादा पानी वो नुकसान देता है, तो ये उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बरसात भी रुकी हुई है और ऐसे समय में प्याज लगेंगे तो उनमें नुकसान होने का खतरा बिल्कुल कम रहेगा हमको।
0: तो ये जो बल्ब आप लगाते हैं जैसे प्याज की बुआई करते हैं, क्या सिंचाई करके लगाते हैं या सूखे खाड़ों में लगवाते हैं?
1: जी, इसके देखो दोनों ही प्रकार हैं, वैसे ज़्यादा बेहतर तो ये रहता है जब हम पानी चला के पहले और तब इसको लगवाएं तो ज़्यादा उपयुक्त है वो, लेकिन अगर हम पहले लगा के और बाद में पानी दे तो भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ठाक पैदावार तब भी हो जाती है, उपयुक्त ये है कि पहले आप पानी दीजिए उसके बाद प्याज लगाइए।
0: जी, और इसके बाद इसमें कितने समय पर बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, जैसे अपने प्याज जब लगा दी जाती है और फूट जाती हैं, हरी हो जाती हैं?
1: देखो जी, शुरुआत में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन या 6 दिन लास्ट शुरुआत में ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है।
0: हर 4-5-6 दिन में?
1: जी, कम से कम आप ये मान के चलो 5 से 6 दिन में शुरुआत में पानी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ जाएगी तो फिर समय भी बढ़ जाता है, और फिर कम से कम 10 दिन में 12 दिन में पानी प्याज में लगना बहुत जरूरी है।
0: पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है इसमें?
1: जी, शुरुआत में ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो फिर पानी की आवश्यकता उतनी नहीं रहती जितनी शुरू में रहती है।
0: तो इसमें निकाई गुड़ाई के लिए आप क्या करते हैं, जैसे खरपतवार हो जाए, घास फूस हो जाए, इसमें जैसे पानी ज़्यादा लगेगा तो ये संभव है कि जरूर घास फूस हो जाता होगा?
1: जी, उसके लिए तो देखो छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन छिड़काव के बाद भी कई बार न्यार हो जाता है जो प्याजों के आसपास ऊपर डांड पे हो जाता है, तो उसके लिए गुड़ाई करनी पड़ती है प्याज की एक बार, या वो खुरपे से, या उसके लिए गेंती फावली आती है उससे, मतलब फावली से उसकी एक बार गुड़ाई करने के बाद अच्छे से, फिर उसमें न्यार नहीं होता दोबारा, लेकिन एक बार आपको गुड़ाई करवानी पड़ती है प्याज के साथ।
0: जी, और कोई रासायनिक खाद ऊपर से छिड़काव करते हैं फसल बड़ी हो जाए जो?
1: जी, गुड़ाई के बाद क्या है, जो बाजार में मुख्यतः कई तरह के अपन को दवाइयाँ जो यहाँ मिल जाती हैं ताकत के लिए, उनकी पैदावार को ज़्यादा
0: बढ़ाने के लिए, वह प्याज मोटी हो जाए और स्वस्थ रहे।
1: जी जी, उसके लिए कई तरह की दवाइयाँ बाजार में मिल जाती हैं अपने, तो उनको एक बार डाल देते हैं तो उससे और अच्छी पैदावार हो जाती है।
0: तो कई बार देखने का आता है, कई बार अपने प्याज में रोग लग जाता है, गड़न लग जाती है, या ऊपर से जो फालर है वो सूखने लग जाती है, जो कीट बीमारी कोई लग जाए, तो उसके लिए आपको कैसे पता चलता है और क्या करते हैं?
1: देखो, जो ग्राम सेवक होता है ग्राम स्तर पे, तो कई बार तो क्या ग्राम सेवक खुद भी आके चेक करते हैं ऐसी बीमारियाँ जब लग जाती हैं तो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो भी सलाह दे देते हैं, या फिर जैसे कोई दुकानदार होता है तो उसको बुला के ले जाते हैं खेतों में, वो तो दिख जाता है क्योंकि फालर खराब होने लग जाती है प्याज की।
0: हाँ, खेत में जब निरीक्षण करते हैं तो पता चल जाता है कि भाई अपनी फसल खराब हो रही है,
1: तो वो पता लग

0: के बाद फिर क्या है, दवाई लिखवा के और डाल देते हैं खेतों में अच्छी तरीके से, तो फिर ठीक हो जाती है बीमारियां ज्यादातर तो
1: जी। एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर होते कृषि पर्यवेक्षक, उनकी सलाह अनुसार आप दवाई डालो।
0: जी जी जी बिल्कुल, उनकी सलाह जरूरी है। और उनसे उनके अलावा जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो भी कई बार निरीक्षण करती हैं गांव में आके, तो वो भी अपने हिसाब से कई बार दवाइयां देके जाते हैं जो भी उपयोग।
1: तो करीब कितने दिन में प्याज ये अपनी तैयार होके मंडी पहुंच जाती है, और क्या सावधानी रखनी चाहिए अपने मंडी ले जाते समय?
0: देखो प्याज मुख्यतः 75 से 90 दिनों की फसल है, और अगर आप ज़्यादा पैदावार कई बार चाहते हैं तो इसको और 10-15 दिन खेतों में रो के रखते हैं। वैसे 70 से 75 या लास्ट
1: 80-90 दिन में तैयार हो जाती है
0: ये फसल आपकी, तैयार लगभग हो जाती है। और मंडी ले जाने से पहले क्या होता है कि इसको उपाड़ के एक बार खेतों में 2-3 दिन के लिए पटका जाता है,
1: सुखाई जाती है
0: ताकि जो प्याज का कलर है वो साफ हो जाए और जो मिट्टी है वो बिल्कुल इसकी साफ हो जाए। उसके बाद इसकी कटिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद एक दिन इसको सुखाने के बाद फिर बोरियों में भर के या कट्टों में भर के इसको मंडी में पहुंचाया जाता है।
1: तो मंडी में क्या करीब, जैसे आपने बहुत सारी मात्रा में प्याज लगाते हो तो क्या एक साथ ले जाते हो या अलग अलग समय पर ले जाते हो?
0: देखो ये एक साथ नहीं जाती क्योंकि मंडी भी नज़दीक है, और इनको टुकड़ों में ले जाया जाता है 50 कट्टे 60 कट्टे के हिसाब से, टेम्पो गाड़ी होती है छोटी वाली, उनमें हर सीजन में इसी तरीके से प्याज को ले जाया जाता है टुकड़ों में। 1 बीघा या 1.5 बीघे की एक बार तैयार हो गई तो उसको पहुंचा दिया, उसके बाद फिर अगली फसल।
1: हाँ जैसे जैसे अपन ने उखाड़ी और वो सूख गए बढ़िया सुखाई करके।
0: जी जी हाँ तो, वो जैसे 1 बीघे की उपाड़ ली तो उसको काट दिया, फिर दूसरी उपाड़ते हैं तब तक उनको सुखा लेते हैं, वो बाकी बची हुई को मंडी पहुंचा देते हैं।
1: तो मंडी में जब ले जाते हैं तो क्या ट्रॉली में भर के ले जाते हैं या कोई कट्टे वट्टे में पैकिंग करके ले जाते हैं?
0: देखो यहाँ खुली प्याज नहीं जाती, यहाँ छोटे छोटे कट्टे होते हैं लगभग 50 से 60 किलो की भरती के, उन कट्टों में इनको भर के और फिर मंडी पहुंचाया जाता है। उसमें कई बार टेम्पो या पिकअप से या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से मंडी में पहुंचाया जाता है।
1: तो बाजार भाव मिलने के क्या अक्सर आसार ठीक रहते हैं प्याज में?
0: देखो जी पिछले सीजन में तो क्या फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तो किसान बहुत घाटे में था, लेकिन हाँ उससे पहले 2-3 साल तक किसान को अच्छे भाव मिले हैं, तो एक प्रॉफिटेबल फसल है प्याज ऐसा कह सकते हैं हम। बाकी देखो समय का कोई पता नहीं, कई बार फसल में नुकसान भी ज्यादा हो जाता है।
1: मौसम आधारित फसल
0: और हाँ मौसम पर डिपेंडेड है पूरी तरीके से, तो कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट हाँ प्रॉफिटेबल है फसल।
1: नगदी फसल के रूप में अपन इस फसल को अच्छी तरह कह सकते हैं,
0: नगदी फसल है, और कई बार तो बहुत अच्छे प्रॉफिट प्याज से किसानों को मिला है, और पिछले 3-4 सालों में ठीक ठाक अच्छी पैदावार हुई है किसान की और भाव भी ठीक ठाक मिले किसान को।
1: ठीक है राशिद खान जी, आपने बहुत अच्छी प्याज की फसल के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सब, जय जवान जय किसान।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
8: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
7: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
8: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
7: पर रेरा तो शहरों में।
8: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
7: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
9: हाँ तो देखो ये तो सुनी अपन ने भेंट वार्ता, बहुत अच्छी लगी, और अब अपन भी इंतज़ार कर रहे हैं और अपने किसान बहन भाई भी। अब किसान बहन भाई को सुनवाते हैं एक लोकगीत, जिसके लोकगीत के कलाकार हैं हनुमान साहेब साथी, और गीत के बोले धीमी चालिए पणियारी। तो सुनो किसान बहन भाई ये लोकगीत।

हाँ तो देखो, ये तो सुना अपने लोकगीत, भाई बहुत अच्छा लगा। हनुमान साय वो उनके साथियों का गाया हुआ। और अब किसान बहन भाई को दिलवाते हैं जानकारी की बातें कि अभी से करें सरसों की फसल की बुआई की तैयारी। किसान बहन भाई, जैसा कि अपन जानते हैं कि सरसों एक नकदी फसल है, और इसकी अगर अपन बुआई की तैयारी समय रहते हुए करेंगे तो अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो सरसों की बुआई में अपने को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो बीजोपचार करके ही अपने को बुआई करनी चाहिए, और निर्धारित मात्रा में बीज लेना चाहिए। खेत की तैयारी सही तरीके से करनी चाहिए, और खेत में अपन को बुआई से पहले 250 से 300 किलोग्राम जिप्सम आवश्यक रूप से डाल देनी चाहिए, जिससे क्या है, दाना चमक और बढ़िया अच्छी गुणवत्ता का होगा। और बुआई से पूर्व अपने को संतुलित जो उर्वरक हैं उनका भी अपने को प्रबंध कर लेना चाहिए, और फसल को पानी से बचाने के लिए जैसे गंधक का जो तेजाब है उसका जो 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। जब बुआई कर दें और उसके बाद में बड़ी हो जाए, उसमें पाले पड़ने की संभावना हो तब, और सिंचाई आवश्यक रूप से अपने को करनी चाहिए। प्रथम सिंचाई सरसों की फसल में अपने को 30 से 40 दिन के बाद, यानी बुआई के 30-40 दिन बाद में अपने को उसकी बुआई करनी देनी चाहिए। इस तरीके से अपन सरसों की फसल की बुआई कर सकते हैं। और इसकी जो बुआई का समय है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक असिंचित क्षेत्र में, और सिंचित क्षेत्र में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भी कर सकते हैं। और जिसकी उन्नतशील किस्में हैं उनकी में से एक किस्म का चयन करके और अपन बुआई कर सकते हैं। इसकी उन्नतशील किस्में हैं जैसे अरावली, या इसको RN 393, पूषा बोल्ड, RS 30, और लक्ष्मी, वसुंधरा, RG N 145, RRN 573, RB 50, NRC DR 6611। और फसल चक्र आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए। इस तरीके से अपन समय रहते हुए अगर सरसों की बुआई की तैयारी करेंगे या खेत की तैयारी करेंगे तो अपन सही तरीके से भी कर सकते हैं। और बनानी क्षेत्रों में चने के साथ अपन इसको मिश्रित फसल के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इस तरीके से अपन सरसों की फसल की तैयारी करके और सही तरीके से उपज प्राप्त कर सकते हैं। और भी बातें अब इसमें हैं जिनको समय रहते हुए ध्यान रखते हुए अगर अपन सरसों की बुआई की तैयारी करेंगे तो सही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में समय समय पर इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। रोग और बीमारी अगर अपने को कोई दिखाई दे तो उनको अपने को तुरंत उपचार करना चाहिए और दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से अपन सरसों की बुआई की तैयारी कर सकते हैं। और अब किसान बहन भाई को बता दें मौसम की जानकारी। मौसम साफ रहेगा और अलवर जिले में अधिकतम तापक्रम 33 डिग्री और न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अपनी चौपाल का होता है समय समाप्त। ले किसान बहन भाई से गया, जय जवान जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में डुप्लीकेट फिल्म से गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं दूर गगन की छाँव में फिल्म से गीत। गीतकार हैं किशोर कुमार और संगीत से संवारा है किशोर कुमार ने।

फिल्म संगीत में लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में मेरे जीवन साथी फिल्म से गीत। गीतकार है मजरू और संगीत से सवारा है आरडी वर्मन ने।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप

फिल्म संगीत में लीजिए आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में इम्तिहान फिल्म से गीत। गीतकार है मजरू और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज आप सुनेंगे लोक गाथा भामोली राम प्रजापति व साथियों की आवाज।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्व

0: स्थानीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है, इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक

0: विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है।

0: जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। शून्य से दो वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंगम पामे और नामपीबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
3: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
2: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
2: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर।
1: 2000 साल
0: जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।

0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
2: कार्यक्रम का अगला गाना शब्बीर कुमार की आवाज में है। फिल्म का नाम है बेताब। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गाना शब्बीर कुमार की आवाज में है। फिल्म का नाम है बेताब। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुनिए। फिल्म का नाम है यादों की बारात, गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा ये करना

0: मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची। पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और यह फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार

दिल दे के देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

0: और फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां, और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।
1: कितना

फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं। फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल दे के देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रही, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रही और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रही। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक के निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारेख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारेख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारिख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारिख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।

परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांता क्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी शाम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल आकाशवाणी दिल्ली।

0: wrestling gold of these games in the men's 65 kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
1: Mahila hockey ke final mein aaj Bharat ki ladkiyon ne ek bahut bada karnama kar dikhaya aur unke liye taaliyan hi taaliyan. Jitni bhi bajaiye kam hai. Cheen ko 1-0 se hara kar swarn padak apne naam kiya aur Los Angeles Olympic mein pratibhagita pakki kar li continental champion hone ke nate. Bhartiya hockey premiyon ke liye ek bahut tanav bhara khoon jamane wala romanch se bhara hua match tha ye. Pool level pe goal dagne wali ladkiyon ne mazboot team ke virudh रणनीति बिल्कुल बदल दी. थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही. फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया. डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर. आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट. भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही. गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे. पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा. खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए. फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण. चीन का अटैक बना, पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला वो बेकार गया. उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक. किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर. सविता पूनिया ने अकल पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया. हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे. डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण. चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी. समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी. अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर. लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया. बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा. स्वर्ण पदक भारत को. अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले. इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है. अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए. चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में.
0: Next, on to the wrestling mat. And this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories. And one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों के फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया. वहीं रजत, रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके. पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की. फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया. सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी. इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर जसाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी. आपको ये भी बताते चले सुजीत साल 2026 में अब तक अजेय है. एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा. वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई. कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के

0: स्तरीय शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. Three Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all three emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
0: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगजाओ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादी मोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया के तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला

0: अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's squadron teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सिपक टोकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगु स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो जापान ने शुरू से ही लीड ले ली थी। एक समय 12-8 से जापान आगे हो गया था, लेकिन भारतीयों ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और स्कोर 12-13 पर ला दिया, यानी अंतर सिर्फ 1 अंक का। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन निर्णायक मौकों पर उनसे हुई चूक और जापान ने मौकों का फायदा उठाया, 15-13 से सेट और मैच जीत लिया। भारत ग्रुप में अपराजय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और ये भारत का क्वाड्रेंट स्पर्धा में पहला पदक है और एशियन गेम्स के इतिहास में सिपक टाकरा में कुल मिलाकर तीसरा पदक। सिपक टाकरा टीम को बहुत साधुवाद।
1: We move on to the golf course, where the competition is heading towards its business end and the Indian contingent had plenty to play for in the round 3. Sakshi Mandwal has the details.
3: Pranavi Urs fired a 4-under-66 to take a 9-stroke lead heading into the final round of the women's individual golf event. India are also second in the team standings behind China, with Aditi Ashok and Deeksha Dagar still in contention for a team medal. In men's team golf event, Team India finished 6th after round 3 with a combined score of 11-under-par-409, carding 136 in the third round. Saptak Talwar continues to lead individual men's efforts, staying in the top tier after solid opening rounds.
1: It was a busy day for the Indian cyclist at the ISU Velodrome. Action across 3 events. In the men's keirin, Ronaldo Singh crashed out in the repechages after taking 6 in the heat, while David Beckham mounted a gritty run through the rounds to make the semi-finals, ultimately finishing 6th in Final B to secure 12th place overall. In the men's Madison final, the duo of Harshveer Singh Sekhon and Vishwajit Singh battled through the demanding 200-lap race, finishing 8th. Meanwhile, Harshita Jakhar gave her all across 4 phases of women's Omnium, the scratch, tempo, elimination and points races, finishing 11th overall with 54 points. Taekwondo was also on India's program today, with Kashish Malik carrying the Indian challenge. Sakshi Mandwal has more.
3: India's Kashish Malik suffered a 1-2 defeat to Kazakhstan's Rita Bakisheva in the mixed individual virtual Taekwondo quarterfinals. Malik's campaign came to an end after she lost out on the head kick count, with the other kick metrics remaining closely matched between the two competitors. This also put an end to India's campaign in the sport.
1: India had 3 athletes competing in kayak cross as the Kenai's Lelong program continued today. In the men's time trials, Hitesh Kewat placed 18th, narrowly missing the cut for the knockout phase, while Pradyumna Singh Rathore clocked the 9th fastest time to advance before crashing out in the quarterfinals. In the women's event, Shikha Chauhan was 9th fastest in the time trials to progress to the knockout stage, where her campaign eventually ended in the quarterfinals. There was more Indian action on the water in sailing, with the competition reaching its concluding stages across several classes. For how the Indian sailors fared today, here's Sakshi Mandwal.
3: India's Netra Kumanan secured a bronze medal in the women's

जानते हो, अब तो दुनिया की हर छोटी सी खुशी भी तुमसे जुड़ गई है। कोई भी बात हो, तुम्हारा जिक्र आते ही मन खिलखिला उठता है। कोई भी गीत सुनते हैं तो तुम्हारी याद उस गीत के साथ जुड़कर उसे और भी खूबसूरत बना देती है। कहीं ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श पास से गुजरा है। चांद में भी अब तुम ही नजर आते हो तो मैं ऐसे सोचते हुए होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कई बार लगता है कि काश तुम सामने होते तो शायद कुछ कह नहीं पाते हम, बस तुम्हें देखते ही रहते।

कितना प्यारा है ये प्यार का रिश्ता। इसमें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दूरियां होती हैं तो पास होने का खूबसूरत एहसास भी होता है, शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो माफी का खास अंदाज भी होता है, इंतजार भी होता है तो मिलने की गुदगुदी भी होती है। एक अदृश्य डोर से बंधे दो दिल एक अटूट विश्वास के रिश्ते में अपना संसार बसाने लगते हैं। इसीलिए कभी अगर तुम्हें कोई खाली खत मिली तो उसे खाली मत समझ बैठना। समझ लेना, जो तुम्हें लिख नहीं पाए हम, उस खाली खत के हर खाली कोने में प्यार लिखा पाओगे, हर धड़कन धड़कती पाओगे, हमारा इंतजार का हर लम्हा पाओगे, और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा पाओगे।

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर।
5: 2000 साल
4: जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
6: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
4: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
7: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
4: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

0: मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20

व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिंचिन

जाओ, ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं, हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर।